इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी कुशल घुड़सवार या महावत को किसी नए और अनियंत्रित जानवर को साधते हुए देखा है? जब कोई जंगली घोड़ा या हाथी पहली बार बाड़े में लाया जाता है तो वह चारों तरफ भागता है, दीवार लांघने की कोशिश करता है और अपने सवार को नीचे गिराना चाहता है। एक कच्चा सवार घबरा कर लगाम छोड़ देता है और चोट खा बैठता है, लेकिन एक मंझा हुआ उस्ताद क्या करता है? वह उस जानवर को खुले मैदान में भागने नहीं देता, वह उसे बाड़े के घेरे में ही रखता है और जैसे ही वह गलत दिशा में मुड़ता है वह तुरंत लगाम खींचकर या अंकुश का हल्का सा प्रहार करके उसे वापस सीधे रास्ते पर मोड़ लेता है। बार बार के इस सदे हुए प्रयास से वह जंगली जानवर पूरी तरह आज्ञाकारी बन जाता है। हमारा यह जो मन है ना, यह भी ठीक उसी जंगली हाथी की तरह है जो हर पल बाहर की दुनिया में भागने की फिराक में रहता है। कबीर साहब आज हमें उसी कुशल महावत की तरह मन को भीतर ही घेरने और साधने का अचूक नुस्खा सिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह अद्भुत सूत्र। मैं मनता मन मारी रे घट ही माहे घेरी, मैं मनता मन मारी रे घट ही माहे घेरी, जब ही चाले पीठी दे अंकुश दे दे फेरी। मैं मनता मन मारी रे घट ही माहे घेरी, मैं मनता मन मारी रे घट ही मा

श्रोताओं, कबीर साहब मन साधना की आंतरिक कला को सिखाते हुए कहते हैं, मैमंता मन मारी रे। हे साधक, यह जो तुम्हारा मैमंता यानी वासनाओं और मद में मतवाला हुआ मन है, तो इसे बाहर संसार में भटकने मत दे। घट ही माहे घेरी, तू अपनी चेतना और सजगता की बाढ़ लगाकर इसे अपने घट यानी अपने ही अंतकरण के भीतर पूरी तरह घेर ले। इसे अंतर्मुखी बना ले। इसे इंद्रियों के रास्ते बाहर मत निकलने दे। और जब यह मन भीतर से भागने की कोशिश करें, तब क्या करना है? अगली पंक्ति में कबीर इसका क्रियात्मक उपाय बताते हैं। जब ही चाले पीठी दे, जब भी यह मन साधना से, ध्यान से या परमात्मा के मार्ग से पीठी दे यानी पीठ दिखाकर विमुख होकर संसार की विषय वासनाओं की ओर भागने लगे, अंकुश दे दे फेरी, तो उसी क्षण तू होश और विवेक के अंकुश यानी अंकुश का प्रहार करके इसे बार बार वापस फेरी यानी अपनी मूल चेतना की तरफ मोड़ ले। जितनी बार यह भागे, उतनी ही बार इसे सजगता से वापिस खींच ला। यह दोहा भगवद गीता के उस प्रसिद्ध सूत्र की हूबहू व्याख्या करता है, जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्च्वल मस्थिरम ततस्तो नियम मेदत्ता मेव वशा नयते। यानी वह चंचल मन जहाँ जहाँ भागे, वहाँ वहाँ से इसे रोक कर बार बार आत्मा में स्थिर करना चाहिए। घट ही माहे घेरी का अर्थ है कि प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को बाहरी विषयों से समेट लेना, और अंकुश दैदे फेरी अभ्यास और वैराग्य की निरंतरता का प्रतीक है। कबीर समझा रहे हैं कि मन एक दिन में शांत नहीं होता, वह बार बार भागेगा। साधक का काम यह नहीं है कि वह निराश होकर बैठ जाए, बल्कि उसका कर्तव्य है कि वह एक सजग पहरेदार की तरह बार बार इसे विवेक की चोट देकर परमात्मा के सुमिरन में वापस ले आए। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने दिन भर के मानसिक क्रियाकलापों पर नजर डालिए। जब भी हम कोई शांत काम करने बैठते हैं, ध्यान लगाने का या कोई नेक विचार करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमारा मन तुरंत किसी पुरानी रंजिश, भविष्य की चिंता या किसी सांसारिक लालच की तरफ पीठ फेर कर भागने नहीं लगता? हम अक्सर उसके पीछे खींचे चले जाते हैं। आज कोशिश कीजिए उस कुशल महावत की तरह बनने की। अपने मन को अपने घट यानी अपनी सांसें और अपनी आत्मा के घेरे में रोकिए। जैसे ही यह किसी बुराई या व्यर्थ के प्रपंचों की तरफ भागे, तुरंत इसे विवेक का अंकुश लगाइए और इस राम नाम के सुमिरन की तरफ मोड़ लीजिए। जब आप बार बार इस अभ्यास को दोहराएंगे, तो यही मतवाला मन आपको सबसे बड़ा मित्र और परम सेवक बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाव।

एपिसोड नंबर 52 बा तथागता अनेक विचारों के कोलाहल नैराश्य आलस्य काम इनका आक्रमण तुमने वापस लौटाया तथापि तेरा ज्ञान भ्रमित करने हेतु मारा ने पुनः पुनः किया हमला तूने लौटाया वापस उपेक्षा से तटस्थता से समता के भाव से शील संवर्धित तब अनेक वर्षों के तेरे ज्ञानाधिष्ठान को फल प्राप्ति हुई और संपूर्ण विश्व के आकलन का ज्ञान तुझे प्राप्त हुआ तू बुद्ध हुआ सम्यक संबुद्ध मनुष्य के दुखों का मूल कारण तुझे ज्ञात हुआ और मिल गया उपाय भी एक दूसरों से जुड़ी श्रृंखला सम प्रतित्य समुक्ताद सिद्धांत की स्थापना और लोक मंगल की तेरी यात्रा का आरंभ आर्य अष्टांगिक मार्ग से तूने दिखा दिया अंगुली निर्देश किया निर्वाण की ओर और मानव जीवन की समाप्ति परिनिर्वाण की ओर परिनिर्वाण यानी मृत्यु फिर मृत्यु का दुख क्यों करना मृत्यु के समय भी तटस्थता गंभीरता स्थिरता और दुख विनाश का भाव तूने सिखाया और मृत्यु हुई सार्थक परिनिर्वाण से जीवन का अंत हर्ष और आनंद से कर्तव्य पूर्ति से स्वीकारने का ढांढस और क्षमता होती है परिनिर्वाण में न आंसू न माया न मोह न लोभ होती है सिर्फ स्थिरता और तटस्थता निर्वाण में निर्वाण की ओर प्रस्थान करते समय प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आ जाती है आफतों की बाढ़ हो जाता है संघर्ष और संघर्षों का युद्ध अनेक बार भड़क उठती है आग की ज्वाला दुखों के पहाड़ बहते हैं आंसू प्रियजनों के विरह में रिश्तेदारों की मृत्यु से लाभ विरहित स्थिति से भाव विवश व्याकुलता से अज्ञान से मनुष्य के जीवन में स्थायी रूप से बसा है भय भय के कारण दुखों दुख तथा अज्ञान इसीलिए आकलन से और ज्ञान साधना से अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है साथ ही साथ भय भी बात तथागता ध्यान साधना को तुमने ज्ञान साधना बनाया और ध्यान साधना में स्थित कर्मकांड नष्ट कर दिया ध्यान साधना की इष्ट देवता को तूने बाध कर दिया ध्यान में निहित लोभी वृत्ति बेनकाब कर दी ध्यान से स्वार्थ फल प्राप्ति की आशा समाप्त कर दी और ध्यान के साथ जोड़ दिया विज्ञान को विशेष प्रकार के परीक्षण निरीक्षण चिंतन और निष्पक्ष भाव से एकाग्र चित्त से चिंतन मनन करना और संवेदनाओं की जांच पड़ताल करना ऐसी विज्ञानवादी भूमिका से तेरी विपश्यना अपना स्थान जमाए बैठी विपश्यना यानी विशेष प्रकार का निरीक्षण इसमें कोई भी कर्मकांड अथवा अंधश्रद्धा नहीं होती विपश्यना यानी एकाग्रता विपश्यना यानी किसी भी आलंबन के बिना तटस्थता से अनुभव की गई क्रिया प्रतिक्रिया है विपश्यना यानी समस्याओं की खोज करना और कारणों की चिकित्सा करना विपश्यना यानी शरीर और मन की वैज्ञानिक परख विपश्यना यानी मन में निहित विचारों को तटस्थता से देखना विपश्यना यानी प्रज्ञा से अनुभव की जाने वाली सम्यक समाधि कुछ स्थानों पर विपश्यना को विरोध दर्शाया गया है पुरोगामी तत्वज्ञानी कहते हैं यह प्रयोग अंबेडकर वाद की आक्रामकता कम करने में सहायक है आरोप यह भी है विपश्यना पद्धति का मार्ग बुद्ध ने कहा ही नहीं।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। खुशी को आप एक नए अंदाज से देख रहे हैं। खुशी यानी कि कंटेंटमेंट यानी कि स्टेबिलिटी। और अब अगर हमने उन फैक्टर्स को देखना शुरू किया है जो हमारे इस हैप्पीनेस इंडेक्स को अनस्टेबल या ऊपर नीचे करते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें हम अभी तक नेचुरल मान रहे थे और ऐसा लगता था कि इन पर हमारा कोई जोर नहीं है, वो समझ में आ रहा है कि पावर मेरे अपने हाथ में है। एक्चुअली एनी टाइम द मोमेंट आई अंडरस्टैंड, जैसे ही मुझे पता चला कि ये वो फैक्टर्स हैं जो मेरी इस हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं मुझसे या मैं नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, वो मैं अब कर सकता हूँ। जैसे ही मुश्किल सामने आती है तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर हमने पास्ट को देखा सिस्टर शिवानी, अमेजिंग व्हाट वी हैव टॉक्ड एक्चुअली इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स इसके पास्ट। और एक्चुअली मैंने ट्राई भी किया कर कि मैं कहीं थी और 2 घंटे के लिए ड्राइव, क्योंकि हमारे ट्रैफिक में फंसे हुए थे, आई रियलाइज्ड कि हम जो भी बात कर रहे थे या तो वो सचमुच पास्ट से जुड़ा हुआ था, उसको एनालाइज कर रहे थे, उसको देख रहे थे, या कुछ ना कुछ हम फ्यूचर के लिए बात करने की कोशिश कर रहे थे, यू नो कि हाउ इट विल बी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आई एक्चुअली ट्राइड, मैंने उनसे भी कहा कि लेट्स ट्राई टू रिमेन इन प्रेजेंट, एंड वी बिकेम साइलेंट।
1: There was nothing to talk about.
0: You know, because present में आते ही traffic दिख रहा था फिर सामने। So actually, how to be in real, really in present? उस पे बात थोड़ा सा करना चाहूँगी।
1: It is very important when we are saying being in the present, कि present moment में my state of mind क्या है? होता क्या है कि जैसे ही हम past या future के बारे में सोचते हैं, पहले सोचते हैं फिर discuss करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी state of mind फ्लक्चुएट होने लगती है। पास्ट की अगर कोई अनप्लेजेंट के बारे में सोचा तो हर्ट आएगी बात में, एंगर भी आ जाएगा, क्रिटिसिज्म होने लगेगी, सो वी गो लाइक दिस। फ्यूचर आएगा तो एंटिसिपेट करेंगे कि ये होगा, खुश होंगे, फिर फियर आएगा कि हो सकता है नहीं हो। तो ये बहुत सारी जो अनस्टेबल कर देती हमें, ये सारी इमोशंस ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाती हैं। बींग इन द प्रेजेंट मोमेंट, इट डजेंट मीन यू कांट टॉक अबाउट द फ्यूचर, कि अगर आप बात कर रहे हो कि कल सारा दिन में हमें क्या करना है, लेकिन ये ध्यान मन की स्थिति, आई एम हैप्पी नाउ। सी वेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर वी से ये होगा तो अच्छा होगा, ये होगा यू नो, ये होगा तो बहुत अच्छा होगा, ये होगा तो बहुत खुशी होगी, और अभी ऐसे ऐसे जा रहे। यू कैन प्लान व्हाट यू वांट टू डू फॉर टुमारो, बट राइट नाउ चेकिंग कि हैप्पीनेस उस पर डिपेंडेंट नहीं है, हैप्पी तो मैं ऑलरेडी
0: हूँ,
1: अभी हूँ। नॉट कंडीशनिंग योर माइंड प्रोग्राम में, हमें पता ही नहीं चलता, हम अनअवेयर हैं कि हम अपने माइंड को कंडीशन करते जाते, जब ये होगा ना तो तुम खुश होगे, जब ये होगा तो तुम खुश, तो वो माइंड प्रोग्राम कर लेता है और वो वेट करता है कि ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, और फिर वो डिपेंडेंसी, फिर वो फियर, ये सब आता। तो इम्पोर्टेंट है माइंड की स्टेबिलिटी को अभी देखते रहें, yes this will happen but my happiness is not dependent.
0: I think to somewhere what we need to do is that see meri abhi present mein meri situation kya hai, you know meri mental state kya hai, phir main past ko bhi analyze kar sakti hu aur future ke bare mein bhi anticipate ya jo planning hai wo ki ja sakti hai, you know.
1: Lekin jab bhi wo sab kuch kar rahe hain, keeping the focus on my state of being, क्योंकि सारा कुछ जो हो रहा है, सपोज हम पास्ट में भी किसी हर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, ऐसा किया, आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई माई हर्ट, तो जस्टिफाई करने से मैं खुश नहीं हो जाऊंगी, यू नो मुझे लगता है आई एम राइट जब मैं जस्टिफाई करती हूँ, बट आई वॉन्ट बी हैप्पी बाय दैट, आई विल हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू बी हैप्पी, टू बी स्टेबल, एंड वंस आई डू दैट I will not blame anyone for the hurt. Right now, my mind is still blaming other people for the hurt. And that's why I want to talk about it. I want to discuss it. The day I'm able to tell myself ki nahin, main theek hoon, main stable hoon, mujhe zarurat nahin lagegi. Kyunki main unko ab zimmewar nahin thehraungi apne dard ke liye. Mujhe ye pata hai ki ye maine kiya, maine create kiya, mujhe finish karna hai. So then I will be very stable. See, discuss karna, lekin uska result kya? हम डिस्कस करते हैं सो दैट वील फील बेटर, चलो मेरे साथ कुछ हुआ, लेट मी गो एंड टॉक टू समबडी अबाउट इट। तो बात करने से क्या हो जाएगा, मैं आपको बात करूंगी कि आपको पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, फिर आप ऊपर से बोलेंगे अच्छा उन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए
0: अच्छा,
1: था
0: तो
1: उनको
0: लेकिन
1: आपके
0: वो
1: साथ।
0: दो जने जब हो तो और 2 घंटे हमने निकालने तो बात क्या करें फिर?
1: अगर आपको पास्ट की कोई बात से सीखना भी है और आप 2 जने बात कर रहे हैं, wouldn't it be nice to discuss that what I went through when I went through this incident, maine kya learn kiya, how did I grow and how I am growing.
0: That's what I did, you know.
1: Yeah, that's okay.
0: That's what I'm saying.
1: See, that as long as pura focus apni personal internal growth ke upar hai, to usse kya hoga, aap empowered hote jayenge. एंड आपकी जो वो डिस्कशन होगी, अगर दो लोगों के साथ है, आपकी डिस्कशन दूसरे के लिए भी एम्पावरिंग है. कई बार हमें रियलाइज ही नहीं होता कि जब हम एक दूसरे को फोन करके या एक दूसरे से बात करते हुए घंटों घंटों उनको अपनी वो वाली कहानियां सुनाते रहते हैं जहां लोगों ने हमें धोखा दिया, अदर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड समटाइम्स. एंड हम क्या कर रहे हैं, अपना दर्द अपना वो सारा हम दूसरे को भी दे रहे हैं. पहले ही सामने वाले के पास अपना शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स है. सो शेयरिंग एंड डिस्कसिंग हर्ट एंड पेन डजंट क्रिएट एनी
0: एक्चुअली क्रिबिंग.
1: क्योंकि फिर क्या होता है, वो हर्ट डिस्कस करते करते हम अभी पेन में चले जाते हैं. दैट इज व्हेन हमने पास्ट का इमोशन प्रेजेंट में कैरी फॉरवर्ड किया, फिर आज डिस्कस किया तो वो और पक्का हो गया, फिर इसको हम कल भी डिस्कस करेंगे वो और पक्का होता जाएगा. एंड देन माई एवरी डे इज इन hurt. It's not just yesterday, but it's today, then it's tomorrow, and it's every day. That's where it becomes very damaging. Because then, wo mera ek dard mein rehne ka hi sanskar banta ja raha.
0: So somewhere that is needed to be checked. So wo hum check karne lag gaye hain, aur wonderful, you know, the way it is coming out. Ki जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमें realization होता है कि हम कर क्या रहे थे.
1: किसी आपने देखा तब आपको रियलाइज हुआ. अभी तक तो हमें रियलाइजेशन भी नहीं थी कि हम कितना पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं.
0: Another factor, which actually I'll say now, I'm very careful what I'm going to say, is that I am not able to create that happiness. I'm not saying it takes away my happiness. Is that I get so stressed out.
1: Yeah.
0: And like we're all living in this area, मतलब जो हमारा काम का या जिंदगी का हर रोज का, मतलब घर तक पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक में 2 घंटे आपको लगते हैं, उस पूरे प्रोसेस में जो आपको चीजें वहां पे होनी है या करवानी है, सो स्ट्रेस्ड आउट, एंड यू फील सो स्ट्रेस्ड आउट. सो व्हाट इज टू बी डन अबाउट दैट.
1: उसके भी हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं जिनको पहले चेक करेंगे तो स्ट्रेस अपने आप वी विल बी एबल टू फ्री फ्रॉम दैट. कि पहली बात तो स्ट्रेस शब्द को ही देखें तो इट्स अ वेरी न्यू वर्ड इन द वोकैबुलरी. आई थिंक अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो हमारी वोकैबुलरी में ये कोई वर्ड नहीं था, स्ट्रेस वर्ड नहीं था. हम कहते थे चिंता, हम कहते थे टेंशन, लेकिन अभी तो स्ट्रेस मतलब वी आर जस्ट टेलिंग आवर सेल्फ कि हम एक स्टेप हायर होते जा रहे हैं. और ये आज हम सिर्फ कॉरपोरेट और इस सर्कल में नहीं लेकिन स्टूडेंट्स भी इस वर्ड को यूज करते हैं. जिस एज ग्रुप को हम कहते थे बेस्ट लाइफ, यू नो स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, एंड that's become
0: most
1: one
0: difficult.
1: Of the most difficult.
0: Most difficult. I didn't say worst, but yes, one of the most difficult, because I'm seeing children going through so much of again stress, and it's just a thought process, you know, apne hi thought process ko aise create karte hue. Another thing which I want to ask Sister Shivani is that, is it the stress we are creating, or is it like, you know, aise aise situations jo aati jati hain, और हमने अपने आप को कंपटीशन में डाल दिया है. मैं ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ या आप?
1: ये एक स्टेटस सिंबल है आज भी. क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में नहीं हैं, आप एकदम रिलैक्स्ड हैं, दैट मींस तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं.
0: क्योंकि अगर कोई फर्क पड़ता है,
1: अगर कोई कुछ कर रहा है, इफ समवन इज इन द रेस एंड वो कंपटीशन में है, उसको स्ट्रेस तो होना ही होना है. एंड दैट इज व्हाई द डीपेस्ट बिलीफ सिस्टम जो है वो है कि स्ट्रेस इज नॉर्मल. ये तो नॉर्मल है,
0: ये तो होना ही चाहिए. आई एम लाइक मेरा बच्चा तो आई एम देयर देयर वाज वन मदर हु सेड शी इज नॉट इवन बॉदर्ड, शी इज नॉट इवन स्ट्रेस्ड आउट.
1: सी शी इज नॉट इवन कंसर्नड एंड शी इज नॉट इवन स्ट्रेस्ड. ये दो अलग सेंटेंसेस हो गए. एक है कि आप केयरलेस हैं, आपके एग्जाम है, आप पढ़ नहीं रहे, आप केयरलेस हैं. लेकिन एक है आप स्ट्रेस्ड हैं. हम दोनों चीजों को सेम कैसे बोल सकते हैं?
0: लेकिन हम दोनों चीजों को एक ही मानने लग गए हैं.
1: अभी एक है कि मेरा एग्जाम है कल, मुझे पढ़ना है, पर मैं पढ़ नहीं रही, दिस इज केयरलेसनेस. तो कोई कहे कि यू आर नॉट कंसर्नड या यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर स्टडीज. लेकिन एक है कि मुझे इतना ज्यादा वो यू नो दर्द ने घेर लिया है कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है. अगर मेरा नंबर ठीक नहीं आया तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे. ये जो एक होल विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट्स जो हमें पकड़ लेता है, तो हम पढ़ने भी अगर बैठते
0: तो
1: हमसे पढ़ाई नहीं होती. और तब हम कहेंगे कि आई एम अंडर स्ट्रेस. एंड तब ऐसी स्थिति में हम पढ़ते भी हैं लेकिन इट डजंट रियली गो इन, क्योंकि माइंड तो मन नहीं तो पढ़ना है बैठ के, तो माइंड एंड इंटेलेक्ट हैज टू सिट एंड स्टडी, लेकिन वो मन तो इस साइकिल ऑफ थॉट्स में चला गया है, तो वो उसमें कैसे जाएगा? और फिर इतना पढ़ने के बावजूद भी जो हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, इट डजंट रियली हैपन दैट वे.
0: एंड देन वी से कि हमने इतना काम किया था, इतना किया था और
1: क्योंकि कितनी बार हम स्कूल में कहा करते थे कि मुझे सब कुछ आता था, यू नो, आज मुझे एग्जाम में सब कुछ आता था, लेकिन मेरे से ये केयरलेस मिस्टेक हो गई. तो केयरलेस मिस्टेक यूज टू बी अ वेरी कॉमन वर्ड, कि और वो केयरलेस मिस्टेक बाद में ऐसे लगती है कि इतना ईजी था. एंड यू समटाइम्स हैव टू आस्क योर सेल्फ, हाउ कुड आई मेक दिस मिस्टेक? मैंने सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कर दिए और उसमें इतनी छोटी बात पर मैं कैसे ये गलती कर सकती हूँ? But that itself is a sign कि mind alert नहीं था. तो mind ने 2+2=4 लिखने की जगह 2+2=6 लिख दिया. मतलब ये कोई ये थोड़ी है कि मैंने पढ़ा नहीं था, ये भी नहीं है कि मुझे आता नहीं था, ये भी नहीं है कि मुझे याद नहीं, यू नो, कोई चीज़ें होती है मुझे याद नहीं आ रही उस टाइम मैंने पढ़ा था, लेकिन ये है कि सब कुछ पता होते हुए भी उस टाइम पता नहीं कैसे लिख दिया. दिस इज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ अलर्टनेस, क्योंकि माइंड पे वो एंग्जाइटी, वो स्ट्रेस है. तो परफॉर्मेंस के लिए जो हम कहते हैं कि यू नो टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू, इनफैक्ट you shouldn't be under stress, but you have to be in fact very very calm. Aajkal to sikhaya jata hai ki exam se ek din pehle be relaxed, be calm, kyunki jitna aapne kiya hai it's important ki wo aap best dekar aaye, bajaye ki aap itna upset ho jaye ki jitna kiya hai. So, lekin ye belief system bhi hum hi to bachchon ke andar dalte hain. यू नो, अगर बच्चा आराम से है, आराम से पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स कहेंगे टेंशन नहीं है तुमको, कल एग्जाम है. क्यों? क्योंकि उनको बहुत टेंशन हुई हुई है. हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग टू अस. इट इज नॉट कि एग्जाम डिफिकल्ट है. यू नो, हम क्या कहते हैं, प्रेशर बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत है, या सिलेबस बहुत है. इट्स नॉट दैट. आई थिंक हमने इससे ज्यादा सिलेबस किए हुए हैं, लेकिन अभी है कॉम्पिटिशन है. लेकिन जैसे ही मैं वो कॉम्पिटिशन को एंटिसिपेट करती, मैं साथ साथ एंटिसिपेट करती इनसिक्योरिटी ऑफ इफ आई डू नॉट पास इन दैट कॉम्पिटिशन, तो मैंने तुरंत क्या क्रिएट कर लिया, फियर. फियर जैसे ही क्रिएट किया, दैट इज स्ट्रेस. फियर कोई एग्जाम देने का नहीं होता है. नो वन इज स्केयर्ड ऑफ गिविंग एग्जाम. मुझे जितना आता है आई विल गिव माय बेस्ट. फियर किस चीज का है,
0: पता नहीं जब रिजल्ट आएगा तो विल आई बी एबल टू डू.
1: अगर मैंने उतना अच्छा, सी दैट इज व्हाई वी से कि फ्यूचर में रहना क्यों इतना डैमेजिंग है. अगर आप अभी प्रेजेंट में हैं तो आप सिर्फ अभी के पढ़ने पर फोकस करेंगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं क्रिएट हो सकता. स्ट्रेस कौन सी थॉट से क्रिएट हो रहा है, अगर मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, मुझे अगर नई एडमिशन मिला, मेरा करियर, यू नो, ऑल दोज थॉट्स, तो फिर पढ़ने में मन कैसे लगेगा. तो ये जो प्रेजेंट में रहने की आदत है, इसको अगर हम नेचुरल करते जाते, ये हमें हर एस्पेक्ट पे मदद करती है. जैसे कल आपने कहा यू वर जस्ट ड्राइविंग, तो मे बी दैट टाइम इट डिडंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. बट अगर आप एक प्रोजेक्ट के बीच में हैं, आप एक डेडलाइन पर काम कर रहे हैं, या जैसे आपका इस तरह से एग्जाम है, कोई ऐसी चीज होती ना, अगर हमारे मन को प्रैक्टिस नहीं होती है, तो उस टाइम हम काम करने की बजाय हम ज्यादा वो फ्यूचर और फ्यूचर का फेलियर ऑलरेडी देखकर वो फियर अभी क्रिएट कर देते हैं.
0: कितनी बार हम कुछ पढ़ रहे होते हैं और वो पढ़ के हम मतलब पेज के पेज पलट जाते हैं, पूरा का पूरा पेज पढ़ जाते हैं, हमें एक भी शब्द अंदर नहीं जाता.
1: दैट जस्ट शोज द पावर ऑफ द माइंड, के मन कुछ एक चीज करते हुए भी मन कुछ और सोच रहा है, क्योंकि मन को प्रेजेंट में लाने की आदत नहीं है. इसी तरह बच्चे पढ़ सकते हैं, पूरा टाइम पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज सबसे कॉमन जो कंप्लेंट है बच्चों की, दैट इज कंसंट्रेशन. एंड देन दे वांट टू आस्क द एल्डर्स, कंसंट्रेट कैसे करें. इट्स नॉट कंसंट्रेट कैसे करें, कोई टेक्निक नहीं है, हमें किसी ने नहीं सिखाया कंसंट्रेट कैसे करना है. इट इज जस्ट दैट राइट थॉट्स कैसे क्रिएट करें. एंड वो राइट थॉट्स फिर सिर्फ पढ़ने के टाइम आप नहीं सीख पाएंगे. यू नो, हम क्या करते, पूरा साल तो कोई भी थॉट्स चल रहे, कैसे अभी चल
0: बोलते हैं कि बैठो 5 मिनट साइलेंस में बैठ जाओ.
1: इट वोंट हैपन.
0: प्रैक्टिस नहीं की हुई जब तक.
1: अब अगर जस्ट बिफोर द एग्जाम हम 5 मिनट साइलेंस में बैठे, तो कौन सी थॉट्स क्रिएट होंगे? वो साइलेंस में बैठते ही तो और सारी वो फियर वाले
0: तो डरने लगते हैं और भी डर रहे होते हो.
1: Yes, it won't happen that time. And that is why ये जो हम art of thinking कि किस तरह की thoughts create करने हैं, ये अगर over a period of time करते आए हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा कि stress create करें फिर stress को कैसे finish करें. लेकिन stress create होगा ही नहीं. ये स्ट्रेस का क्रिएट होने का सबसे बड़ा कारण है ये फ्यूचर को एंटिसिपेट करना इस तरह से. एंड उसमें भी जैसे एंटिसिपेट करते फेलियर को अगर देख लेते और वो हमारा अभी फियर क्रिएट कर, और जब इतना फियर यहाँ क्रिएट हो जाता तो हाउ विल यू फील. अब आप उसको वर्ड स्ट्रेस दे दो, बट बी सो कि वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट्स इट मेक्स मी फील एब्सोल्युटली लो, एंड फिर वो लो फीलिंग के साथ आप प्रोजेक्ट करने बैठो या पढ़ने बैठो. How can you do well? It's not possible. The stress se lekar kai ek belief systems hai jinko agar hum check kare aur change kare aur fir kal chale apne jeevan ki yatra mein, aadha kaam to wahi ho jayega. Kyunki jaise humne kaha tension to normal hai. Just ask anybody. Aap 4 saal ke bacche se le lo and of course us senior age group tak chale jao. Tension hoti hai? Aapko kisi ko tension hoti hai? To kahenge tension to sabko hoti hai. Ye kaun sa question hai? Tension normal hai. Tension natural hai. To agar wo normal hai, to aap usko khatam karne ka prayas karenge?
0: Normal hai to hoti hai, to kya karna hai usse khatam?
1: Nahi, to wo to fir normal hai. You know, let's say, agar yahan

0: के ऊपर आप बात काम ही नहीं करोगे ना, आप बाकी सारी चीजों पे काम करते जाओ,
1: आप नहीं करेंगे. क्योंकि नॉर्मल क्या है, इसका बिलीफ बहुत क्लैरिटी से चाहिए होता है. क्योंकि हम कंडीशन है कि जो चीज नॉर्मल है मतलब वो ठीक है. जैसे ही हमने किसी चीज को कहा कि ये अननेचुरल है तो हम उसके ऊपर कुछ मेहनत करते. आप घर पहुंचे, आज आपको थोड़ा सा फीवर है, तो आपने देखा थर्मामीटर पे 100 है, 101 है, तो आपको मालूम है कि ये नॉर्मल नहीं है. बिकॉज यू नो दैट इट इज नॉलेज. नॉलेज है कि ये जो ट्राइंगल मार्क जहाँ बना है वो ही नॉर्मल है. वो मर्क्यूरी उससे इतना भी ऊपर होगा ना, थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है, मुझे बुखार है, आई विल इमिजिएटली टेक मेडिकेशन एंड आई विल गो ऑन टेकिंग माई मेडिसिन आफ्टर एवरी 6 hours टिल दैट मर्क्यूरी कम्स टू दैट नॉर्मल मार्क. उसके बाद अगर मुझे नहीं भी ठीक लग रहा होगा ना, थोड़ा मेरे को अभी भी लग रहा है थोड़ा फीवरिश, लेकिन अगर मर्क्यूरी थर्मामीटर में दिख गया कि ये नॉर्मल है,
0: then I'll not take the medicine.
1: Then I will not. See, that's why what is normal is so important. I will take medicine only जब तक मुझे वो पता है कि ये नॉर्मल नहीं है. अब टेंशन के लिए क्यों नहीं मेडिसिन ले रहे, क्योंकि हमने कह दिया ये ही
0: नॉर्मल है. ये तो है, ये तो आज के इस पूरे युग में.
1: तो फिर हम उसको थोड़ी खत्म करने का कोई भी प्रयास करेंगे. इसलिए पहले तो ये बिलीफ सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से शेक करना पड़ेगा कि स्ट्रेस इज नेचुरल, स्ट्रेस इज नॉर्मल, दिस इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. इसको चेक करना पड़ेगा कि टेंशन कुछ भी नहीं है, इट्स अ पेन. ये एक दर्द है जो आता है मुझे बताने के लिए कि मुझे कुछ चेंज करना है.
0: एक्चुअली हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस को कहते हैं नॉर्मल है, क्योंकि जैसे ही वो ज्यादा होने लगता है ना, तब हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता, तब हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं. लेकिन थोड़ा
1: लेकिन तो भी हम उसके सॉल्यूशंस कहाँ ढूंढते हैं?
0: हाँ, वो जिस भी तरह से ढूंढ रहे होते हैं
1: कहाँ ढूंढते हैं कि ये सब ठीक हो जाए. हाँ, तब मेरा स्ट्रेस ठीक हो जाएगा. यस, दैट्स ऑल्सो वेयर आर वी लुकिंग फॉर दिस सॉल्यूशन. तो वी आर लुकिंग फॉर दिस सॉल्यूशन परिस्थिति के अंदर, कि परिस्थिति ठीक हो जाए, किसी भी तरह परिस्थिति ठीक हो जाए.
0: इस सिचुएशन में आपका ऐसे बिहेव करना तो नॉर्मल है, आपका स्ट्रेस में आना, मतलब एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे.
1: तो फिर वही है ना, हमने अगर हम बच्चे को ये समझा सकें कि एग्जाम के टाइम पर रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है. कभी ये कहा कि रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है?
0: आई डोंट रिमेंबर एनीवन.
1: या रिलैक्स्ड ही रहना है बच्चे. हाँ. नहीं, टेंशन होना तो नॉर्मल है. और खुद ही इतने टेंस्ड होते हैं, खुद के फेस और बॉडी.
0: ये कहते जाते हैं कि आप रिलैक्स रहो, रिलैक्स
1: वो रिलैक्स रहो. हाँ. भी कैसे कहते हैं, इट इज सो.
0: और वो हम खुद इतने टेंशन में होते हैं
1: एग्जाम के टाइम पे. द होल एनर्जी इन द हाउस इज वेरी डिफरेंट.
0: नोबडी कैन कम, यू नो. उसके राहुल के एग्जाम्स है ना, तो फ्रेंड्स नहीं आ सकते, रिलेटिव्स नहीं आएंगे. इट्स लाइक अमेजिंग द वे वी क्रिएट.
1: तो एक है कि बच्चे को पढ़ना है, उसको साइलेंस चाहिए, एक अलग कमरा आप दे दो, सब कुछ कर दो. लेकिन घर में जितना हो सके वायुमंडल भी हमें नॉर्मल ही रखना पड़ेगा. जितना हम नॉर्मल रखेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे, तो बच्चा भी फील करेगा ना कि हाँ, सब कुछ नॉर्मल तो है, मैं एक एग्जाम ही तो देने जा रहा हूँ.
0: अंदर से नहीं नॉर्मल होते ना हम.
1: वही ना, अंदर होंगे तो बाहर भी तो ऑटो. लेकिन हमने ही वो एग्जाम को इतना बड़ा. अब हो क्या रहा है, पहले तो फिर भी साल में एक बार एग्जाम आता था, चलो पूरा साल तो चलता. अब वो एग्जाम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है.
0: सितंबर में आएंगे, पहले फरवरी बोर्ड्स होंगे,
1: फिर वो वीकली कुछ टेस्ट होंगे, ये व्हाटएवर. तो क्योंकि एवरी एग्जाम एंड एवरी टेस्ट इज बिकमिंग लाइक दिस, तो ओवरऑल पूरा साल ही बच्चे का कैसे बीत रहा है. जैसे कि वो एक हाई प्रेशर उसमें यू नो वर्क कर रहा है, वो माइंड के लिए बहुत डैमेजिंग है. वही चाइल्डहुड जो हमारे लिए सबसे ब्यूटीफुल पीरियड हम कहते थे, आज वही बच्चे कहते हैं कि इट इज वेरी वेरी स्ट्रेस. सीन इवन विद बच्चे जो प्ले स्कूल के लिए एडमिशन के लिए जाते हैं, स्कूल्स के एडमिशन के लिए जाते हैं, उनको कितना स्ट्रेस है. डू यू थिंक एक 3 साल का बच्चा एक स्कूल के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसको भी पेरेंट्स क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा ये स्ट्रेस में है कि नहीं मिला तो. See, ये जो फियर क्रिएट हो रहा है, वो बच्चे को उस एज से ही हम वो डेवलप कर देते कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं हुआ तो तुम यू आर अ फेलियर.
0: पर अब हम यहाँ पे क्या, पेरेंट अगर देख रहे हैं तो वो ये कहेंगे ब्लेम गेम यहाँ शुरू होगा. स्कूल्स ऐसे हो गए हैं, एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है, पूरा माहौल ऐसा हो गया है, उसमें मेरे को तो करना ही पड़ेगा. अगर मैंने नहीं किया तो जिस स्कूल में मैं बच्चे को डालना चाहता हूँ.
1: हमें क्या क्या करना होगा, हमें पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करानी होगी, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा. सिर्फ हमें एक चीज़ नहीं करनी होगी, फियर नहीं क्रिएट करना. वी नॉट सेइंग वी नॉट गोइंग टू स्टडी. ऑब्वियसली जो है फिर माहौल, हमें माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना.

0: पड़ता। स्ट्रेस वर्ड को ही अगर हम देखें तो साइंस में स्ट्रेस वर्ड को हम लेते तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो प्रेशर तो है ही ना बाहर। पहले तो कभी स्कूल में आई वेंट टू स्कूल आई डेंट हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू। वो मेरे पेरेंट्स गए एडमिशन करा के वापस आ गए और कहा एंड इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ द सिटी और कहा आपका एडमिशन हो गया आपको स्कूल जाना है। आज वो छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कितनी मेहनत से गुजरते। तो ठीक है प्रेशर चेंज हो रहा है, हम बैठकर उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन जितना प्रेशर न्यूमरेटर है ना बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर रेजिलियंस इनर स्ट्रेंथ, उस प्रेशर को फेस करने की मेरी अपनी आंतरिक शक्ति। मेटल शीट्स हैं, इंडस्ट्री में हम जाते हैं अलग अलग मेटल शीट्स हैं, हर मेटल शीट के ऊपर सेम प्रेशर अप्लाई किया जाता लेकिन हर मेटल का स्ट्रेस फैक्टर अलग अलग क्योंकि इनर स्ट्रेंथ अलग अलग। तो हम में से भी हर एक की अपनी अपनी एक आंतरिक शक्ति है। प्रेशर हर एक के ऊपर इक्वल है लेकिन जिसकी जितनी इनर स्ट्रेंथ होगी वो उस प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से फेस कर पाएगा। आज क्या हो रहा, प्रेशर तो बढ़ रहा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर पर ध्यान नहीं दे रहे और फियर क्रिएट करते जा रहे, फियर
1: उसको तो वीक करते जा रहे,
0: डिनोमिनेटर घटता जा रहा है तो न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर घटता जा रहा है,
1: स्ट्रेस
0: फैक्टर बढ़ता जा रहा है इतना ज्यादा। एंड न्यूमरेटर इज ऑफकोर्स इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट ना, क्योंकि परिवर्तन बहुत तीव्र गति से है लेकिन क्योंकि ध्यान नहीं रखा डिनोमिनेटर भी बहुत तीव्र गति से घटता जा रहा and stress factor is increasing very very fast. Yes. It will go beyond our control.
1: We really need to see, you know. और हम ये कहते हैं कि हमने तो अपने आप को situations के accordingly इसलिए create कर रहे हैं. You know situations ही ऐसी हैं तो हम अपने आप को उन्हीं के उसी के according तो तैयार करते जा रहे हैं. वो तैयारी जो बाहरी है, जो चीजें करनी है वो तो ठीक है. Amazing. We always have to remember this. Stress is equals to pressure upon my inner strength. You know. तो अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शन है मेरी इनर स्ट्रेंथ पे। तो अगर मेरी इनर स्ट्रेंथ प्रेशर को तो हमें क्योंकि हम बाहर की चीज़ों को कुछ नहीं कर सकते, जो मेरी इनर स्ट्रेंथ है उसे मैं जितना बढ़ाती जाऊंगी, बच्चे की इनर स्ट्रेंथ को जितना बढ़ाती जाऊंगी स्ट्रेस अपने आप कम होता जाएगा। इट्स ब्यूटिफुल।
0: एंड स्ट्रेस कम होता जाएगा, परफॉर्मेंस अपने आप अच्छे होती जाएगी। हम सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस्ड है। जो स्टेबल होगा, कॉन्फिडेंट होगा, काम होगा, वो परफॉर्म नहीं करे अच्छा ऐसा हो नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल।
1: वेरी ट्रू। और हम अपने आप भी देखते आए हैं कि जब हम जितना अभी तक भी तो बच्चे टेंथ से पहले भी तो बच्चा पढ़ रहा होता था और वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा होता था, मतलब बच्चा अपने आप अपनी बहुत सारी चीजें कर रहा था। तो हमें अपने आप को देखना है कि हमने एटमोसफेयर कैसा क्रिएट किया है, पूरा जो हमने अपने लिए जो स्ट्रेस फैक्टर है उसे कितना ज्यादा आगे बढ़ाया है, तो वही तो फिर फ्लो होके बच्चे तक जा रहा है। सिचुएशंस, टीचर, स्कूल, लोग सब कुछ कहते रहेंगे, वो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो बढ़ता ही जाएगा। अगेन जितना वो बढ़ेगा उतना ही मुझे अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को, और मैंने देखा अमेजिंग, आई नेवर रियलाइज इट कि जितना वो बढ़ रहा था मैंने न्यूमरेटर को एक्चुअली कम करती गई हूँ मैं, क्योंकि वो मैं डरती गई। तो मुझे ना डरते हुए अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाना है। यू नो इट्स एक्चुअली सो ईजी इफ यू लुक एट इट, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला कभी नहीं समझा था। थैंक यू सिस्टर शिवानी। लाइक आज हम एक फैक्टर पर बात कर पाए हैं लेकिन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वी हैव हिट। तो इस पर आप जरूर सोचें और अभी तक का जो बिलीफ सिस्टम्स पर हम जी रहे थे कि जितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है मैंने अपने आप को उसी हिसाब से तो मोल्ड किया है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो ऐसी चीजें करनी ही पड़ेंगी, करना और किस स्थिति में मैं करूँगा ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे। पढ़ाना भी है आपको बच्चों को, आपको सब कुछ करना है, तैयारी भी करानी है, बट किस थॉट प्रोसेस के साथ, किस स्टेज में रहकर कराना है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए राजयोग में हम बार बार मेडिटेशन की बात करते हैं, इट हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ आर लाइफ। तो अगर कोई मन में बात उठती है, कोई सवाल उठ रहा है, स्ट्रेस से जुड़े हुए आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, आपका स्वागत। आप हमें कॉल करें या फिर आप हमें ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। स्ट्रेस से जुड़ा एक बिलीफ सिस्टम कि स्ट्रेस इज नॉर्मल, इसको आज हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाए कि कैसे इसको नॉर्मल मान के हमने अपनी लाइफ में स्ट्रेस को बढ़ाया है। आसान सा सोल्यूशन है, एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करें, स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल और स्टेबिलिटी इज नॉर्मल, रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है, फिर देखें कि कैसे जो सोल्यूशंस निकलते हैं. थैंक यू सो मच ओम शांति, और आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें करेंगे. ओम शांति.

0: आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंत अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे विनोबा जी द्वारा लिखित कुरान सार।
1: प्रेम पंत अहिंसा का
2: कुरान सार का संपादन करते हुए विनोबा जी कहते हैं कि साइंस ने दुनिया छोटी बनाई और वह सब मानवों को नज़दीक लाना चाहता है। ऐसी हालत में मानव समाज फिरकों में बटा रहे, हर जमात अपने को ऊंचा समझे और दूसरों को नीचा समझे, यह कैसे चलेगा? हमें एक दूसरे को ठीक से समझना होगा, एक दूसरे का गुण ग्रहण करना होगा। इसी उद्देश्य से धम्मपद की पुनर्रचना मैंने की थी और गीता के बारे में मेरे विचार गीता प्रवचनों के जरिए लोगों के सामने पेश किए थे। बरसों से भूदान के निमित्त मेरी पदयात्रा चल रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य दिलों को जोड़ने का रहा है। बल्कि मेरी जिंदगी के कुल काम दिलों को जोड़ने के एकमात्र उद्देश्य से प्रेरित हैं। कुरान सार में वही प्रेरणा है। मैं आशा करता हूँ परमात्मा की कृपा से वह सफल होगी। विनोबा जी ने जो धार्मिक साहित्य लिखा है, चुना है या अनुदित किया है, वह धर्म प्रसार की दृष्टि से ही किया है। पर जिसे हम स्थूलतः धार्मिक साहित्य कहते हैं, उसके लेखन पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मानो उन्हें वह आशीर्वाद ही फलित हुआ है जो महाराष्ट्र में भजन के अंत में ईश्वर से मांगा जाता है। वह आशीर्वाद नित्य ही मांगा जाता है और सामूहिक रूप से मांगा जाता है। सैकड़ों वर्षों से यह रीति चली आई है। मराठी भाषा में मूल आशीर्वाद का अभंग इस प्रकार है। हे प्रभु, हमारे करुणामय हरि के सभी दासों को, भक्तों को, इस पूरी मंडली को तू शाश्वत जीवन प्रदान कर। वे कभी भी किसी भी समय किसी भी प्रकार की कल्पनाओं से, मानसिक तरंगों से पीड़ित, त्रस्त और उद्वेलित न हो। हमारी यह संत मंडली सदैव परम सुख का अनुभव करे। इन्हें तू सुखी जीवन प्रदान कर। हमारे विष्णु के इन निष्ठावान सेवकों को क्षुद्र अहंकार का कभी स्पर्श तक ना हो, ये सदा तेरे साथ समरस रहें। भक्त शिरोमणि नामा कहते हैं, जिनके मुख में सदैव विश्व प्रतिपालक आनंदमय प्रभु पांडुरंग का नाम रहता है, जिनका एकमात्र आधार तू ही है, उनका सदैव कल्याण हो, इस संत समाज का सतत अभ्युदय हो और इसे निःश्रेयस की प्राप्ति हो। हम मानते हैं कि इस आशीर्वाद ने उनसे धर्म पालन करवाया है और उसी के अनुसरण में कुछ लिखवाया है। कुरान शरीफ का काम भी इसी तरह ईश्वर ने उनसे करवाया है, ऐसा हम मानते हैं। कुरान शरीफ के विनोबा जी के अध्ययन का श्री गणेश हमारी जानकारी के अनुसार इस प्रकार है। वर्धा आश्रम में औरों की तरह एक मुसलमान बालक भी आया। उसने सुना था कि वहाँ जाने से वह कुछ जीवनदायी विद्या सीख लेगा। उसने आश्रम में कातना सीखा, धुनना, बुनना, राष्ट्रीय जीवन जीना सीखा। आश्रम में जो प्रवचन होते थे उन्हें भी वह सुनता था। कुछ दिन के बाद उसकी इच्छा हुई कि वह विनोबा जी से कुरान पढ़े। उसने विनोबा जी से प्रार्थना की कि वे उसे कुरान पढ़ाएं। विनोबा जी धर्म विषयक ग्रंथों के अभ्यासी थे। उन्होंने अंग्रेजी में तो कुरान पहले ही पढ़ी थी, पर अब इस बच्चे को पढ़ाने के लिए कुरान का मराठी अनुवाद मंगा लिया और उसे देख लिया। फिर अन्य भाषाओं के कुछ और अनुवाद भी देख लिए और साथ ही मूल ग्रंथ ही देखने का भी निश्चय कर लिया। जैसे कि उनकी विचार पद्धति है, उन्होंने सोचा कि इस कार्यकर्ता की इच्छा द्वारा उन्हें एक ईश्वरीय संकेत मिला है कि वे कुरान का अभ्यास करें। तभी से उनका कुरान का अध्ययन तीव्रता से चलने लगा। हमें जहाँ तक स्मरण है, ये अभ्यास सन 1937 से प्रारंभ हुआ। कुरान शरीफ चूँकि अरबी में था, इसलिए उसके शुद्ध उच्चारण की समस्या थी। कुरान पढ़ने के लिए पवनार के देहात में जो मुल्ला भाई मिल सकते थे, उन्हीं से विनोबा जी कुरान पाठ के सबक लेने लगे। स्पष्ट है कि ऐसे मुल्ला लोगों को केवल पाठ करना आता है, लिख वे नहीं सकते और अर्थ वे शायद ही समझते हों। कुरान पाठ करने में उनका उच्चारण शास्त्रीय नहीं होता। विनोबा जी ने कुरान का उच्चारण कैसा हो, इसके लिए तद्विषय ग्रंथों के आधार से जानकारी प्राप्त की। भिन्न भिन्न भाषाओं के उच्चारण शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। शुद्ध उच्चारण करने की उनकी अपनी विशेष क्षमता थी और उसका वे आग्रह भी रखते थे। फलतः कुरान शरीफ की आयतों का उन्होंने अस्खलित और सम्यक रूप से उच्चारण आरंभ किया। भारत में अनेक स्थानों पर लोग कुरान में आए शब्दों के इकार और उकार का उच्चारण फारसी पद्धति से करते हैं, परंतु विनोबा जी ने कुरान पाठ में मूल अरबी की ही पद्धति का उच्चारण आरंभ किया। उसे सुनकर स्थानीय मुल्ला तो दंग रहा ही, अन्य लोग भी विस्मित होकर रह गए। गांधी जी को थोड़े दिनों में पता चला कि उनका विनोबा कुरान का अध्ययन कर रहा है, तो कहते हैं कि उन्होंने कहा, हम में से किसी को तो भी ये करना ही था, विनोबा कर रहा है, यह आनंद का विषय है। उच्चारण बिल्कुल शास्त्र शुद्ध हो, इसलिए कुछ दिनों के बाद विनोबा जी ने एक युक्ति और निकाली। उन्हें एक गुरु मिल गया। वह गुरु था ऑल इंडिया रेडियो। उन दिनों एक अरबी कारी द्वारा अरब से होने वाली कुरान की तिलावत अर्थात कुरान पाठ दिल्ली रेडियो से प्रसारित होता था। विनोबा जी रेडियो खोल देते और अपनी सहज स्वभाव सिद्ध एकाग्रता से वे कुरान पाठ सुनते। इस पर से उन्होंने कुरान के शब्दों के उच्चारण की पद्धति को पकड़कर उसे अपना लिया। अब जब विनोबा जी कुरान पढ़ते तो उनके उच्चारण हम जैसों को तो बहुत अभिनव प्रतीत होते। इस प्रकार कुरान पाठ का आयोजन होते ही विनोबा जी कुरान का अर्थ समझने के लिए स्वयं अपने शिक्षक बने। उन्होंने अरबी आयत और उसके सामने अंग्रेजी तर्जुमा की किताब हाथ में ली, एक आयत पढ़ी और उसका अर्थ पढ़ा, ऐसे कई पारायण किए, फिर शब्द और प्रत्यय, क्रिया और उसके रूप, अव्यय और वाक्य एवं उसकी प्रक्रियाएं देखना आरंभ किया। इस प्रकार कई पारायण करके विनोबा जी ने अपने लिए उसका एक व्याकरण तैयार किया और इसके उपरांत अरबी व्याकरण मंगाकर उससे उसकी तुलना करके ठीक कर लिया। अब उन्हें आयतों का अर्थ, शब्दों की रचना और व्याकरण की जानकारी हुई और जैसी कि उनके अध्ययन की सामान्य पद्धति है, शब्दों का मूलगामी अर्थ भी उनके हाथ आ ही गया। विनोबा जी का कुरान का यह अध्ययन जेल में भी चला। अध्ययन काल में विनोबा जी को कुरान के जितने भी अंग्रेजी अनुवाद मिल सके उन्होंने देख डाले। उन अनुवाद ग्रंथों में जिन विशेष ग्रंथों का उल्लेख मिला उन ग्रंथों को भी मंगाकर उन्होंने पढ़ डाला। विनोबा जी जिस भक्ति भाव से कुरान पढ़ते, वह भक्ति भाव उनकी आंखों से आंसुओं की प्रेममयी धारा बहाता। कुरान शरीफ में भक्तों का इसी प्रकार का एक जिक्र आया है, जिसका अर्थ करते हुए कई अनुवादकों ने आंखें तर हो जाती हैं, आंखें भर आती हैं, ऐसा अर्थ किया है। विनोबा जी को देखते हुए हमें यह विश्वास हो गया कि वहां उस शब्द का अर्थ आंखों में आंसू उमड़ आते हैं, वे सतत प्रवाहित होते हैं, इस प्रकार ही करना ठीक होगा। कुरान में मक्की अर्थात मक्का में अवतरित हुए सूरा अर्थात प्रकरण में विनोबा जी को बहुत अधिक आनंद की अनुभूति होती थी। उन्होंने अपनी यह स्थिति धर्मनिष्ठ बादशाह खान खान अब्दुल गफ्फार खान से कही। वे वर्धा में आते थे तो दोनों की मुलाकात होती थी। बादशाह खान विनोबा जी से सहमत हुए और उन्होंने बताया कि उनका अपना भी ऐसा ही अनुभव है। उन्हीं दिनों कहते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद एक बैठक के लिए वर्धा पधारे थे। विनोबा जी बापू से मिलने गए। आज़ाद की उपस्थिति में बापू ने विनोबा जी से कुरान पाठ कराया। मौलाना विनोबा जी के उच्चारण से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें जब पता चला कि देहात के एक मुल्ला से विनोबा ने कुरान पढ़ी है तो उच्चारण की इतनी स्पष्टता का कारण वे समझ ना सके। जब विनोबा जी के सारे प्रयत्नों की जानकारी उन्हें मिली तभी उन्हें समाधान हुआ। विनोबा के कुरान संबंधी ज्ञान से मौलाना बहुत प्रसन्न हुए। मौलाना आज़ाद का कुरान संबंधी ज्ञान अत्यंत विस्तृत था और इसके लिए वे सारे भारत में प्रख्यात थे। उन्होंने पहले सूरा से 18वें सूरा तक का ही अनुवाद करके प्रकाशित किया था। विनोबा जी की बड़ी इच्छा थी कि मौलाना कुरान शरीफ के अपने अनुवाद का शेष कार्य पूरा करते और सूरे कहफ से सूरे अन्नास तक का तर्जुमा पूरा कर डालते। कहते हैं कि मौलाना से जब कभी कोई इस संबंध में निवेदन करता था तो वे कहते थे, मस्तिष्क में तो सारा भरा पड़ा है, कभी कागज पर भी उतर आएगा, पर उसके लिए समय मिलना चाहिए। दुख की बात है कि वह समय उन्हें नहीं मिल सका और वह तर्जुमा हमें नहीं मिला। उनसे हमें गुबारे खातिर हिंदुस्तान की आज़ादी की जीत तो मिली, पर तर्जुमानुल कुरान का दूसरा हिस्सा नहीं मिला, सो नहीं ही मिला। विनोबा जी से कोई यदि कुरान के किसी महत्वपूर्ण विषय या शब्द के संबंध में पूछता तो वे तुरंत कुरान का पन्ना पलटकर उसे बता देते, ऐसी उनकी कुरान संबंधी ज्ञान की स्थिति। इसी कारण कुरान सार तैयार करते समय सारे विषयों का समग्रता से ध्यान रखकर विनोबा जी कुरान की आयतों का सुचारू रूप से चयन कर सके। विनोबा जी के कुरान शरीफ के अध्ययन में बीच में कुछ व्यवधान पड़ा था, पर अजमेर के भूदान सम्मेलन के पूर्व विनोबा जी ने फिर कुरान शरीफ का अध्ययन शुरू कर दिया था। भूदान पदयात्रा में वे जिस जिस प्रांत में जाते थे वहाँ के लोगों के हाथ में जो धर्म ग्रंथ होता था उसका गहराई से वे अध्ययन करते थे। जब वे अजमेर शरीफ की ओर जा रहे थे तब सहज ही कुरान शरीफ ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। 1.5 साल की मेहनत से रूहुल कुरान नामक अरबी नाम से यह पुस्तक तैयार हुई। कश्मीर के विद्वान हाफिज मौलाना मोहम्मद साहब मसूदी ने ठीक ही कहा कि विनोबा जी ने यह जो काम किया, इस काम के लिए कोई कमेटी भी बैठाई होती तो उसे यह काम करने में कई वर्ष लग जाते। कुरान में जो जो विषय आए हैं उनमें से जीवन के लिए सारभूत होने वाले जो अंश हैं वे इस पुस्तक में उपस्थित हैं, इसलिए इस पुस्तक का नाम कुरान सार, जैसा कि उन्होंने उर्दू भूदान तहरीक के संपादक श्री अहमद फातमी साहब को एक पत्र में लिखा था, कुरान की रूहानी तालीम अर्थात आध्यात्मिक सीख दुनिया के सामने पेश करने के लिए इस किताब का उपयोग होगा। धर्म ग्रंथ लेखन करते समय विनोबा जी ने एक संस्कृत श्लोक तैयार किया है, यह श्लोक नित्य स्मरणीय श्लोक का स्थान प्राप्त कर सकता है। श्लोक यह है, आरंभे तदनुध्यानम्

प्रेषितैर्गूढ़शोधनम्। यदि संभव होता तो यह पुस्तक जिस प्रकार संपादित हुई उसी प्रकार से छप जाती, जैसा कि धम्मपद का हुआ। पाली में मूल ग्रंथ और संस्कृत में संपादन, संपादन में विनोबा जी की जैसी विशिष्ट दृष्टि थी वैसी ही अर्थ के संबंध में भी थी, परंतु उनकी इस विशेष दृष्टि का ज्ञान उनके निकटवर्ती लोगों को है। इस कार्य के लिए विनोबा जी के पास समय कहाँ। अनेक धर्म प्रेमी लोगों ने विनोबा जी से कई बार प्रार्थना की कि ऋग्वेद से हमें आप कोई पाथेय निकाल कर दीजिए। वो विनोबा के ही हाथ का वेद प्रसाद चाहते थे। 36 साल वेदाध्ययन, अखंड वेदाध्ययन विनोबा जी ने किया। मूलभूत और विशिष्ट दृष्टि से उन्होंने उसका अवगाहन किया, पर विनोबा जी के पास उसका चयन करने को समय कहाँ। और भी दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की ओर वे थोड़ा सा भी ध्यान देते तो दो अनमोल ग्रंथ आज समाज को मिल सकते थे। उनकी निकटवर्ती मंडली जब कभी उनसे इस विषय में निवेदन करती तो विनोबा जी कहते, आप हमें सारे भारत का ग्राम स्वराज करा दें तो हम निश्चिंत होकर आप लोग जिस प्रकार का ऋग्वेद का सार चाहते हैं उसी प्रकार का सार तैयार कर देंगे। कुरान का यह चयनकार आरंभ हो चुका था और आरंभ किया हुआ कार्य बीच में छोड़ना ठीक नहीं होगा, ऐसा शायद उन्हें लगा। इसी कारण या अन्य किसी कारण से वस्तुतः राम राम करके बड़ी उत्कंठा और कठिनाई से यह पुस्तक उनके अंतेवासियों को मिल सकी है। कुरान संबंधी व्याख्यान की अगर बात की जाए तो हम दो नहीं हैं, तीन हैं और तीसरा बहुत महान है। यह विचार इस भूदान पद यात्रा में कितनी बार विनोबा ने सुनाया है और भूदान गंगा में इस विषय की विस्तृत जानकारी दी है। सन 1945 में लिखी राम नाम एक चिंतन पुस्तक में उन्होंने कुरान में जिस शिर्क का जिक्र आता है उसकी बहुत ही अभिनव और विकसित व्याख्या की है। इंदौर में दिए हुए आध्यात्मिक प्रवचनों में सूर्य को प्रणिपात ना करो, उसके निर्माता को प्रणिपात करो, इस विषय का जो विवेचन उन्होंने किया है उसमें उनकी व्यापक और समन्वयी वृत्ति का स्पष्ट दर्शन होता है। इल्मुल यकीन अर्थात निश्चित ज्ञान और आइनुल यकीन अर्थात निश्चित साक्षात्कार। इल्मुल यकीन और आइनुल यकीन का उल्लेख तो उनके अनेक व्याख्यानों में आया है और 13 काम संदेश पहुंचा।

हक सत्य सब्र धृति और रहमत करुणा। हक सब्र और रहमत की ताकीद एक दूसरे को करो, उनका यह व्याख्यान बहुत ही प्रसिद्ध है। कश्मीर में दिए गए उनके कई व्याख्यान कुरान सार पर आधारित हैं, पर विशेष रूप से कुरान की तालीम, मजहब के अरकान अर्थात धर्म के स्तंभ, खुदा किसे मदद देता है और कुरान की तिलावत, ये व्याख्यान उन विषयों को अच्छी तरह समझाते हैं। विनोबा द्वारा संपादित कुरान सार के चयन में विनोबा जी ने सांपराय के विषय पर विस्तार से अवतरण लिए हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि बहिष्त अर्थात स्वर्ग और दोजख अर्थात नरक ये बच्चों को या बालवत समाज को समझाने की बातें हैं, पर विनोबा जी मानते हैं कि स्वर्ग नरक उतने ही वास्तविक हैं जितना हमारा जीवन वास्तविक है, और इसीलिए उन्होंने कुरान के इस विषय को छोड़ा नहीं। गीताई चिंतनिका में उन्होंने इस विषय की विशेष रूप से व्याख्या की है, इससे इस संबंध में विनोबा जी के विचारों की कल्पना की जा सकती है। कुरान के नैतिक व्यवस्था के संदर्भ की बात करें तो पंच महावृतों को विनोबा जी ने अपने कुरान सार में कुरान के आधार से महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सूद अर्थात ब्याज को कुरान शरीफ में नाजायज माना है। इस विषय पर जितने महत्वपूर्ण अवतरण मिले हैं उन्हें विनोबा जी ने कुरान सार में उद्धृत किया है। ब्याज पूर्णतः त्याज्य है, ऐसा ही विनोबा जी मानते हैं। ग्रामदान द्वारा जिस समाज रचना की स्थापना के लिए विनोबा जी प्रयत्नशील हैं, वह ऐसी रचना है जिसमें ब्याज के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। इस विषय में लोग बीच की राह निकालना चाहते हैं और उस पर तरह तरह के वाद खड़े करते हैं, पर हमारा स्पष्ट मत है कि कुरान शरीफ में सभी प्रकार के ब्याज निषिद्ध माने गए हैं। कुरान सार में 9 खंड हैं। नंबर 1 ग्रंथारंभ, नंबर 2 ईश्वर, नंबर 3 भक्ति रहस्य, नंबर 4 भक्त अभक्त, नंबर 5 धर्म, नंबर नीति, नंबर 7 मानव, नंबर 8 प्रेषित अर्थात रसूल, और नंबर 9 गूढ़ शोधन। ग्रंथारंभ में मंगलाचरण अर्थात अल्फातिहा और ग्रंथ गौरव अर्थात जलालते किताब, ऐसे 2 अध्याय हैं। ग्रंथ गौरव अध्याय में ग्रंथ प्रकाश, ग्रंथ स्वरूप और ग्रंथ पठन विधि, इस प्रकार 3 प्रकरण हैं। नंबर 2 ईश्वर, इसके बाद ईश्वर खंड आरंभ होता है। इसमें 1 एवाद्वितीय, देवता निषेध, ऐसे 2 प्रकरण हैं। इसके उपरांत प्रभु का स्वरूप ज्ञानमय है, इसमें परमात्मा प्रकाश स्वरूप और सर्वज्ञ, ऐसे 2 प्रकरण आते हैं। इसके बाद उसकी करुणा का दर्शन कराया जाता है और उस दयामय अध्याय में दयालु और ईश्वरीय देने, ये 2 प्रकरण हैं। इसके उपरांत ईश्वर का अनंत कर्तत्व हमें समझाया गया है। कर्ता अध्याय में सृष्टिकर्ता, ईश्वर की रचना और ईश्वरीय संकेत, इस प्रकार 3 प्रकरण किए गए हैं। इसके अनंतर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति का वर्णन आता है। उस सर्वशक्ति अध्याय में सर्वशक्तिमान, इच्छा समर्थ और उसकी अवर्णनीयता का वर्णन है। फिर हम परम प्रभु के साक्षात्कार की आकांक्षा रखते हैं, उसका नाम स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस खंड के बाद हम भक्ति रहस्य के 3रे खंड में प्रवेश करते हैं। 3रा खंड भक्ति रहस्य, इसमें भक्ति, सत्संगति और अनासक्ति, ऐसे 3 अध्याय हैं। भक्ति में प्रार्थना, उपदेश, सृष्टिकृत प्रार्थना, निष्ठा, त्याग, समर्पण, कसौटी एवं आश्वासन और धीरज, ये प्रकरण है। सत्संगति,

0: अध्याय में सत्संग का ही प्रकरण है और अनाशक्ति में संसार के अनित्यत्व का भान और वैराग्य, ये दो प्रकरण हैं। इसके बाद भक्त अभक्त प्रकरण होता है। इस खंड में भक्त और अभक्त, विधायक और निषेधक, ऐसा मिलकर दोनों के वर्णन से विषय पूरा होता है। इस भाग में ये दो अध्याय ही हैं। भक्त के सुलक्षणों में उनके अनेक पहलू, उनकी प्रार्थनामयता, उनकी निष्ठा, सहनशीलता, अहिंसा वृत्ति, दानशीलता आदि का वर्णन देते हुए अंत में उन्हें देवभूतों से जो आशीर्वाद प्राप्त होते हैं उनका उल्लेख करके हम भी ऐसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखें, ऐसी कामना की गई है। इसके बाद अभक्तों के अवलक्षण समझाए गए हैं। वे नास्तिक हैं, अविश्वासी हैं, भ्रांत चित्त वाले, मोध कर्माण और नरक भाज होते हैं। उनका दर्शन विपरीत होता है। उनके कर्म कैसे विफल होते हैं यह दिखाकर उनकी नारकीय दुर्गति का दृश्य सामने खड़ा किया गया है। इस प्रकार भक्त तथा अभक्त का लक्षण और कुलक्षण देकर अन्वय और व्यतिरेक न्याय से विधेयक और निषेधक दोनों पद्धतियों से हमें पूरी जानकारी मिलती है। क्रम 5 और 6, धर्म और नीति। धर्म विचार एवं नीति के दो खंड हैं। धर्म खंड में धर्म विचार है, जिसमें धर्म निष्ठा, धर्म सहिष्णुता और धर्म विधि, ऐसे तीन प्रकरण हैं। इसके अनंतर नीति का खंड शुरू होता है। इसमें नीति विषयक पंच महाव्रत, नीति बोध और शिष्टाचार, ऐसे तीन प्रमुख विषय आए हैं। भव्य वातावरण का दर्शन करने वाला प्रकरण इसमें निहित है। अंत में स्वर्ग का लाभ और उससे प्रभु कृपा का अनंत विस्तार हमारे सामने उपस्थित किया जाता है। मेरे पास स्वर्ग से भी अत्यधिक है। कुरान शरीफ के इस प्रभु प्रसाद को बांटते हुए कुरान सार के संपादक ने हम पर बहुत उपकार किए हैं। स्पष्ट है कि कुरान सार में कुरान शरीफ के केवल अवतरण हैं, पर इन अवतरणों की प्रकरण रचना देखकर हम स्तंभित हो जाते हैं और यही उद्गार हमारे मुंह से अनायास निकल जाता है कि हे प्रभु, तू जिस पर अपनी कृपा करना चाहता है उस पर करता है। हम भी प्रभु से प्रार्थना करें कि वह दयामय प्रभु हम पर भी अपनी कृपा की वर्षा करें, आमीन। एक भाई ने, जो कि दार्शनिक दृष्टि से अपने को नास्तिक मानते हैं, विनोबा जी से प्रश्न पूछा, आप आजकल अध्यात्म का विशेष रूप से उल्लेख किया करते हैं, इस अध्यात्म से आपका क्या मतलब है? विनोबा जी ने जो जवाब दिया उसका आशय है कि नंबर 1, सर्वोच्च नैतिक मूल्यों में तथा नैतिक जीवन में श्रद्धा, नंबर 2, जीव मात्र एक हैं इस ज्ञान में एवं भान में श्रद्धा, और नंबर 3, मृत्यु उपरांत जीवन के सातत्य में श्रद्धा। उस भाई ने फिर पूछा, क्या विश्व के सभी धर्म इन बातों को मानते हैं? विनोबा जी ने स्पष्ट उत्तर दिया, जी हाँ। विनोबा जी ने जिन धार्मिक ग्रंथों का चयन और संपादन किया है उनमें इस दृष्टि के कारण अध्यात्म अर्थात दर्शन, भक्ति, नीति और भक्तों के भगवान का सद्गुण संकीर्तन होता है। भक्तों के विशेष अनुभवों का दिग्दर्शन भी उनमें होता है। कुरान सार भी इन्हीं विषयों का संपुट है, यह स्पष्ट है। कुरान के अध्ययन के समय विनोबा जी ने जिन ग्रंथों का अध्ययन किया उनकी जानकारी मिलना तो कठिन है, क्योंकि विनोबा जी स्वयं उस विषय में कुछ कहेंगे यह आशा हम रख नहीं सकते। उनके आश्रम के ग्रंथालयों में ही जो ग्रंथ इस विषय पर होंगे वे सब उन्होंने देखे हैं, यह स्पष्ट है। जो ग्रंथ पढ़कर उन्होंने ग्रंथ स्वामियों को लौटा दिए होंगे उन्हें हम कैसे जाने, इस विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते। पर कुरान सार का संकलन करते समय भूदान पदयात्रा में जिन ग्रंथों का उपयोग विनोबा जी ने किया उनकी सूची निम्नानुसार हम आपको बताते हैं। विनोबा जी के मन में शब्दों का जो अर्थ है उस अर्थ के अनुकूल अर्थ है या नहीं, यह देखने के लिए जिन जिन ग्रंथों का उपयोग हुआ वे ग्रंथ हैं कुरान शरीफ के अंग्रेजी अनुवाद और भाष्य, नंबर एक एम पिक्थाल का अनुवाद, नंबर दो पामर का अनुवाद, नंबर तीन यूसुफ अली का अनुवाद और नंबर चार मौलवी शेर अली का अनुवाद। उर्दू अनुवाद और भाष्यों में है, नंबर एक कुरानुल मजीद हज़रत शेखुल हिंद मौलाना मोहम्मद हसन और हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी देवबंदी, नंबर दो कुरानुल हकीम शाह रफ़ीउद्दीन साहब दहलवी और मौलाना अशरफ अली साहब थानवी, नंबर तीन तफसीर सगीर हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन अहमद साहब इमाम जमात अहमदिया, नंबर चार हमाय शरीफ शम्सुल उलमा जनाब मौलवी हाफिज़ नज़ीर अहमद ख़ान साहब। अंग्रेज़ी संदर्भ ग्रंथों में हैं कनकॉर्डेंस ऑफ ग्लॉसरी ऑफ कुरान बनारस के क्रिश्चियन मिशन द्वारा प्रकाशित। उर्दू संदर्भ ग्रंथ है लुगातुल कुरान, इसकी 6 जिल्दें, इसके प्रकाशक हैं नदवतुल मुसन्निफीन जामा मस्जिद दिल्ली।
1: आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेमपंत अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में आज हमने जाना विनोबा जी द्वारा लिखित कुरान सार।
2: यह कार्यक्रम रेडियो एमगिरी 90.4 FM द्वारा प्रस्तुत किया गया।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी कुशल घुड़सवार या महावत को किसी नए और अनियंत्रित जानवर को साधते हुए देखा है? जब कोई जंगली घोड़ा या हाथी पहली बार बाड़े में लाया जाता है तो वह चारों तरफ भागता है, दीवार लांघने की कोशिश करता है और अपने सवार को नीचे गिराना चाहता है। एक कच्चा सवार घबरा कर लगाम छोड़ देता है और चोट खा बैठता है, लेकिन एक मंझा हुआ उस्ताद क्या करता है? वह उस जानवर को खुले मैदान में भागने नहीं देता, वह उसे बाड़े के घेरे में ही रखता है और जैसे ही वह गलत दिशा में मुड़ता है, वह तुरंत लगाम खींचकर या अंकुश का हल्का सा प्रहार करके उसे वापस सीधे रास्ते पर मोड़ लेता है। बार बार के इस सदे हुए प्रयास से वह जंगली जानवर पूरी तरह आज्ञाकारी बन जाता है। हमारा यह जो मन है ना, यह भी ठीक उसी जंगली हाथी की तरह है जो हर पल बाहर की दुनिया में भागने की फिराक में रहता है। कबीर साहब आज हमें उसी कुशल महावत की तरह मन को भीतर ही घेरने और साधने का अचूक नुस्खा सिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह अद्भुत सूत्र। मैं मनता मन मारी रे घट ही माहे घेरी, मैं मनता मन मारी रे घट ही माहे घेरी, जब ही चाले पीठी दे अंकुश दे दे फेरी। मैं मनता मन मारी रे घट ही माहे घेरी, मैं मनता मन मारी रे घट ही मा

श्रोताओं, कबीर साहब मन साधना की आंतरिक कला को सिखाते हुए कहते हैं, मैमंता मन मारी रे। हे साधक, यह जो तुम्हारा मैमंता यानी वासनाओं और मद में मतवाला हुआ मन है, तो इसे बाहर संसार में भटकने मत दे। घट ही माहे घेरी, तू अपनी चेतना और सजगता की बाढ़ लगाकर इसे अपने घट यानी अपने ही अंतकरण के भीतर पूरी तरह घेर ले। इसे अंतर्मुखी बना ले। इसे इंद्रियों के रास्ते बाहर मत निकलने दे। और जब यह मन भीतर से भागने की कोशिश करें, तब क्या करना है? अगली पंक्ति में कबीर इसका क्रियात्मक उपाय बताते हैं। जब ही चाले पीठी दे, जब भी यह मन साधना से, ध्यान से या परमात्मा के मार्ग से पीठी दे यानी पीठ दिखाकर विमुख होकर संसार की विषय वासनाओं की ओर भागने लगे, अंकुश दे दे फेरी, तो उसी क्षण तू होश और विवेक के अंकुश यानी अंकुश का प्रहार करके इसे बार बार वापस फेरी यानी अपनी मूल चेतना की तरफ मोड़ ले। जितनी बार यह भागे, उतनी ही बार इसे सजगता से वापिस खींच ला। यह दोहा भगवद गीता के उस प्रसिद्ध सूत्र की हूबहू व्याख्या करता है, जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्च्वल मस्थिरम ततस्तो नियम मेदत्ता मेव वशा नयते। यानी वह चंचल मन जहाँ जहाँ भागे, वहाँ वहाँ से इसे रोक कर बार बार आत्मा में स्थिर करना चाहिए। घट ही माहे घेरी का अर्थ है कि प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को बाहरी विषयों से समेट लेना, और अंकुश दैदे फेरी अभ्यास और वैराग्य की निरंतरता का प्रतीक है। कबीर समझा रहे हैं कि मन एक दिन में शांत नहीं होता, वह बार बार भागेगा। साधक का काम यह नहीं है कि वह निराश होकर बैठ जाए, बल्कि उसका कर्तव्य है कि वह एक सजग पहरेदार की तरह बार बार इसे विवेक की चोट देकर परमात्मा के सुमिरन में वापस ले आए। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने दिन भर के मानसिक क्रियाकलापों पर नजर डालिए। जब भी हम कोई शांत काम करने बैठते हैं, ध्यान लगाने का या कोई नेक विचार करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमारा मन तुरंत किसी पुरानी रंजिश, भविष्य की चिंता या किसी सांसारिक लालच की तरफ पीठ फेर कर भागने नहीं लगता? हम अक्सर उसके पीछे खींचे चले जाते हैं। आज कोशिश कीजिए उस कुशल महावत की तरह बनने की। अपने मन को अपने घट यानी अपनी सांसें और अपनी आत्मा के घेरे में रोकिए। जैसे ही यह किसी बुराई या व्यर्थ के प्रपंचों की तरफ भागे, तुरंत इसे विवेक का अंकुश लगाइए और इस राम नाम के सुमिरन की तरफ मोड़ लीजिए। जब आप बार बार इस अभ्यास को दोहराएंगे, तो यही मतवाला मन आपको सबसे बड़ा मित्र और परम सेवक बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो।

एपिसोड नंबर 52 बा तथागता अनेक विचारों के कोलाहल नैराश्य आलस्य काम इनका आक्रमण तुमने वापिस लौटाया तथापि तेरा ज्ञान भ्रमित करने हेतु मारा ने पुनः पुनः किया हमला तूने लौटाया वापिस उपेक्षा से तटस्थता से समता के भाव से शील संवर्धित तब अनेक वर्षों के तेरे ज्ञानाधिष्ठान को फल प्राप्ति हुई और संपूर्ण विश्व के आकलन का ज्ञान तुझे प्राप्त हुआ तू बुद्ध हुआ सम्यक संबुद्ध मनुष्य के दुखों का मूल कारण तुझे ज्ञात हुआ और मिल गया उपाय भी एक दूसरों से जुड़ी श्रृंखला सम प्रतित्य समुक्ताद सिद्धांत की स्थापना और लोक मंगल की तेरी यात्रा का आरंभ आर्य अष्टांगिक मार्ग से तूने दिखा दिया अंगुली निर्देश किया निर्वाण की ओर और मानव जीवन की समाप्ति परिनिर्वाण की ओर परिनिर्वाण यानी मृत्यु फिर मृत्यु का दुख क्यों करना मृत्यु के समय भी तटस्थता गंभीरता स्थिरता और दुख विनाश का भाव तूने सिखाया और मृत्यु हुई सार्थक परिनिर्वाण से जीवन का अंत हर्ष और आनंद से कर्तव्य पूर्ति से स्वीकारने का ढांढस और क्षमता होती है परिनिर्वाण में न आंसू न माया न मोह न लोभ होती है सिर्फ स्थिरता और तटस्थता निर्वाण में निर्वाण की ओर प्रस्थान करते समय प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आ जाती है आफतों की बाढ़ हो जाता है संघर्ष और संघर्षों का युद्ध अनेक बार भड़क उठती है आग की ज्वाला दुखों के पहाड़ बहते हैं आंसू प्रियजनों के विरह में रिश्तेदारों की मृत्यु से लाभ विरहित स्थिति से भाव विवश व्याकुलता से अज्ञान से मनुष्य के जीवन में स्थायी रूप से बसा है भय भय के कारण दुखों दुख तथा अज्ञान इसीलिए आकलन से और ज्ञान साधना से अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है साथ ही साथ भय भी बात तथागता ध्यान साधना को तुमने ज्ञान साधना बनाया और ध्यान साधना में स्थित कर्मकांड नष्ट कर दिया ध्यान साधना की इष्ट देवता को तूने बाध कर दिया ध्यान में निहित लोभी वृत्ति बेनकाब कर दी ध्यान से स्वार्थ फल प्राप्ति की आशा समाप्त कर दी और ध्यान के साथ जोड़ दिया विज्ञान को विशेष प्रकार के परीक्षण निरीक्षण चिंतन और निष्पक्ष भाव से एकाग्र चित्त से चिंतन मनन करना और संवेदनाओं की जांच पड़ताल करना ऐसी विज्ञानवादी भूमिका से तेरी विपश्यना अपना स्थान जमाए बैठी विपश्यना यानी विशेष प्रकार का निरीक्षण इसमें कोई भी कर्मकांड अथवा अंधश्रद्धा नहीं होती विपश्यना यानी एकाग्रता विपश्यना यानी किसी भी आलंबन के बिना तटस्थता से अनुभव की गई क्रिया प्रतिक्रिया है विपश्यना यानी समस्याओं की खोज करना और कारणों की चिकित्सा करना विपश्यना यानी शरीर और मन की वैज्ञानिक परख विपश्यना यानी मन में निहित विचारों को तटस्थता से देखना विपश्यना यानी प्रज्ञा से अनुभव की जाने वाली सम्यक समाधि कुछ स्थानों पर विपश्यना को विरोध दर्शाया गया है पुरोगामी तत्वज्ञानी कहते हैं यह प्रयोग अंबेडकर वाद की आक्रामकता कम करने में सहायक है आरोप यह भी है विपश्यना पद्धति का मार्ग बुद्ध ने कहा ही नहीं

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। खुशी को अब एक नए अंदाज से देख रहे हैं। खुशी यानी कि कंटेंटमेंट, यानी कि स्टेबिलिटी। और अब अगर हमने उन फैक्टर्स को देखना शुरू किया है जो हमारे इस हैप्पीनेस इंडेक्स को अनस्टेबल या ऊपर नीचे करते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें हम अभी तक नेचुरल मान रहे थे और ऐसा लगता था कि इन पर हमारा कोई जोर नहीं है, वो समझ में आ रहा है कि पावर मेरे अपने हाथ में है। एक्चुअली एनी टाइम द मोमेंट आई अंडरस्टैंड, जैसे ही मुझे पता चला कि ये वो फैक्टर्स हैं जो मेरी इस हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं मुझसे या मैं नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, वो मैं अब कर सकता हूँ। जैसे ही मुश्किल सामने आती है तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी। सिस्टर शिवानी, ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर हमने पास्ट को देखा, सिस्टर शिवानी, अमेजिंग व्हाट वी हैव टॉक्ड एक्चुअली इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स, इसके पास्ट। और एक्चुअली मैंने ट्राई भी किया कर कि मैं कहीं थी और 2 घंटे के लिए ड्राइव, क्योंकि हमारे ट्रैफिक में फंसे हुए थे, आई रियलाइज्ड कि हम जो भी बात कर रहे थे या तो वो सचमुच पास्ट से जुड़ा हुआ था, उसको एनालाइज कर रहे थे, उसको देख रहे थे, या कुछ ना कुछ हम फ्यूचर के लिए बात करने की कोशिश कर रहे थे, यू नो कि हाउ इट विल बी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आई एक्चुअली ट्राइड, मैंने उनसे भी कहा कि लेट्स ट्राई टू रिमेन इन प्रेजेंट, एंड वी बिकेम साइलेंट।
1: देयर वाज नथिंग टू टॉक अबाउट,
0: यू नो, बिकॉज़ प्रेजेंट में आते ही ट्रैफिक दिख रहा था फिर सामने। So actually how to be really in present, us pe baat thoda sa karna chahunga.
1: It is very important when we are saying being in the present, ki present moment mein my state of mind kya hai. होता क्या है कि जैसे ही हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पहले सोचते हैं फिर डिस्कस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड फ्लक्चुएट होने लगती है। पास्ट की अगर कोई अनप्लेजेंट के बारे में सोचा तो हर्ट आएगी बात में, एंगर भी आ जाएगा, क्रिटिसिज्म होने लगेगी, सो वी गो लाइक दिस। फ्यूचर आएगा तो एंटिसिपेट करेंगे कि ये होगा, खुश होंगे, फिर फियर आएगा कि हो सकता है नहीं हो। तो ये बहुत सारी जो अनस्टेबल कर देती हमें, ये सारी इमोशंस ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाती हैं। बींग इन द प्रेजेंट मोमेंट, इट डजेंट मीन यू कांट टॉक अबाउट द फ्यूचर, कि अगर आप बात कर रहे हो कि कल सारा दिन में हमें क्या करना है, लेकिन ये ध्यान मन की स्थिति, आई एम हैप्पी नाउ। सी वेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर वी से ये होगा तो अच्छा होगा, ये होगा, यू नो, ये होगा तो बहुत अच्छा होगा, ये होगा तो बहुत खुशी होगी, और अभी ऐसे ऐसे जा रहे। यू कैन प्लान व्हाट यू वांट टू डू फॉर टुमारो, बट राइट नाउ चेकिंग कि हैप्पीनेस उस पर डिपेंडेंट नहीं है, हैप्पी तो मैं ऑलरेडी
0: हूँ,
1: अभी हूँ। नॉट कंडीशनिंग योर माइंड प्रोग्राम, हमें पता ही नहीं चलता, हम अनअवेयर हैं कि हम अपने माइंड को कंडीशन करते जाते, जब ये होगा ना तो तुम खुश होगे, जब ये होगा तो तुम खुश, तो वो माइंड प्रोग्राम कर लेता है और वो वेट करता है कि ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, और फिर वो डिपेंडेंसी, फिर वो फियर, ये सब आता। तो इम्पोर्टेंट है माइंड की स्टेबिलिटी को अभी देखते रहें कि यस दिस विल हैपन, बट माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट।
0: आई थिंक टू समवेयर वॉट वी नीड टू डू इज दैट सी मेरी अभी प्रेजेंट में मेरी सिचुएशन क्या है, यू नो, मेरी मेंटल स्टेट क्या है, फिर मैं पास्ट को भी एनालाइज कर सकती हूँ और फ्यूचर के बारे में भी एंटिसिपेट या जो प्लानिंग है वो की जा सकती है।
1: लेकिन जब भी वो सब कुछ कर रहे हैं, कीपिंग द फोकस ऑन माई स्टेट ऑफ बींग, क्योंकि सारा कुछ जो हो रहा है, सपोज हम पास्ट में भी किसी हर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, ऐसा किया, आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई माई हर्ट, तो जस्टिफाई करने से मैं खुश नहीं हो जाऊंगी, यू नो, मुझे लगता है आई एम राइट जब मैं जस्टिफाई करती हूँ, बट आई वॉन्ट बी हैप्पी बाय दैट, आई विल हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू बी हैप्पी, टू बी स्टेबल, एंड वंस आई डू दैट I will not blame anyone for the hurt. Right now, my mind is still blaming other people for the hurt. And that's why I want to talk about it. I want to discuss it. The day I'm able to tell myself ki nahin, main theek hu, main stable hu, mujhe zarurat nahin lagegi. Kyunki main unko ab zimmewar nahin thehraungi apne dard ke liye. Mujhe ye pata hai ki ye maine kiya, maine create kiya, mujhe finish karna hai. So then I will be very stable. See, discuss karna, lekin uska result kya? हम डिस्कस करते हैं सो दैट वील फील बेटर, चलो मेरे साथ कुछ हुआ, लेट मी गो एंड टॉक टू समबडी अबाउट इट। तो बात करने से क्या हो जाएगा, मैं आपको बात करूंगी कि आपको पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, फिर आप ऊपर से बोलेंगे अच्छा उन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए
0: अच्छा,
1: था
0: तो
1: उनको
0: लेकिन
1: आपके
0: वो
1: साथ।
0: दो जने जब हो तो और 2 घंटे हमने निकालने, तो बात क्या करें फिर?
1: अगर आपको पास्ट की कोई बात से सीखना भी है और आप 2 जने बात कर रहे हैं, wouldn't it be nice to discuss that what I went through when I went through this incident? Maine kya learn kiya? How did I grow and how I am growing?
0: That's what I did, you know.
1: Yeah, that's okay.
0: That's what I'm saying.
1: See, as long as pura focus apni personal internal growth ke upar hai, to usse kya hoga? Aap empowered hote jayenge. एंड आपकी जो वो डिस्कशन होगी अगर दो लोगों के साथ है आपकी डिस्कशन दूसरे के लिए भी एम्पावरिंग है. कई बार हमें रियलाइज ही नहीं होता कि जब हम एक दूसरे को फोन करके या एक दूसरे से बात करते हुए घंटों घंटों उनको अपनी वो वाली कहानियां सुनाते रहते हैं जहां लोगों ने हमें धोखा दिया. द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड समटाइम्स एंड हम क्या कर रहे हैं अपना दर्द अपना वो सारा हम दूसरे को भी दे रहे हैं. पहले ही सामने वाले के पास अपना शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स है. सो शेयरिंग एंड डिस्कसिंग हर्ट एंड पेन डजंट क्रिएट एनी
0: एक्चुअली क्रिबिंग
1: कंप्लेनिंग विद लाइफ
0: क्रिबिंग हाँ क्रिब करते रहना कंप्लेन करते रहना
1: क्योंकि फिर क्या होता है वो हर्ट डिस्कस करते करते हम अभी पेन में चले जाते हैं. दैट इज व्हेन हमने पास्ट का इमोशन प्रेजेंट में कैरी फॉरवर्ड किया फिर आज डिस्कस किया तो वो और पक्का हो गया फिर इसको हम कल भी डिस्कस करेंगे वो और पक्का होता जाएगा एंड देन माई एवरी डे इज इन hurt. It's not just yesterday, but it's today, then it's tomorrow, and it's every day. That's where it becomes very damaging. Because then it becomes a sanskar in my pain. So somewhere
0: that is needed to be checked. So now we've checked it. And wonderful, you know, the way it is coming out. जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमें realization होता है कि हम कर क्या रहे थे.
1: जैसे आपने देखा तब आपको रियलाइज हुआ. अभी तक तो हमें रियलाइजेशन भी नहीं थी कि हम कितना पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं.
0: अनदर फैक्टर व्हिच एक्चुअली आई विल से नाउ आई एम वेरी केयरफुल व्हाट आई एम गोना से इज दैट आई एम नॉट एबल टू क्रिएट दैट हैप्पीनेस. आई एम नॉट सेइंग इट टेक्स अवे माय हैप्पीनेस इज दैट आई गेट सो स्ट्रेस्ड आउट एंड लाइक वी आर ऑल लिविंग इन दिस एरिया मतलब जो हमारा काम का या जिंदगी का हर रोज का मतलब घर तक पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक में दो घंटे आपको लगते हैं उस पूरे प्रोसेस में जो आपको चीजें वहां पे होनी है या करवानी है. सो स्ट्रेस्ड आउट एंड यू फील सो स्ट्रेस्ड आउट. सो व्हाट इज टू बी डन अबाउट दैट.
1: उसके भी हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं जिनको पहले चेक करेंगे तो स्ट्रेस अपने आप वी विल बी एबल टू फ्री फ्रॉम दैट. कि पहली बात तो स्ट्रेस शब्द को ही देखें तो इट्स अ वेरी न्यू वर्ड इन द वोकैबुलरी. आई थिंक अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो हमारी वोकैबुलरी में ये कोई वर्ड नहीं था. स्ट्रेस वर्ड नहीं था. हम कहते थे चिंता हम कहते थे टेंशन लेकिन अभी तो स्ट्रेस मतलब वी आर जस्ट टेलिंग आवर सेल्फ कि हम एक स्टेप हायर होते जा रहे हैं. और ये आज हम सिर्फ कॉरपोरेट और इस सर्कल में नहीं लेकिन स्टूडेंट्स भी इस वर्ड को यूज करते हैं. जिस एज ग्रुप को हम कहते थे बेस्ट लाइफ यू नो स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ एंड दैट्स बिकम वन ऑफ द
0: मोस्ट डिफिकल्ट. आई डिडंट से वर्स्ट बट यस वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बिकॉज़ आई एम सीइंग चिल्ड्रन गोइंग थ्रू सो मच ऑफ अगेन स्ट्रेस एंड इट्स जस्ट अ थॉट प्रोसेस यू नो अपने ही थॉट प्रोसेस को ऐसे क्रिएट करते हुए. अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू आस्क शिवानी इज दैट इज इट द स्ट्रेस वी आर क्रिएटिंग और इज इट लाइक यू नो ऐसे सिचुएशंस जो आती जाती हैं और हमने अपने आप को कंपटीशन में डाल दिया है. मैं ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ या आप.
1: ये एक स्टेटस सिंबल है आज पे क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में नहीं हैं आप एकदम रिलैक्स्ड हैं दैट मींस तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं. अगर कोई कुछ कर रहा है इफ समवन इज इन द रेस एंड वो कंपटीशन में है उसको स्ट्रेस तो होना ही होना है. एंड दैट इज वाई द डीपेस्ट बिलीफ सिस्टम जो है वो है कि स्ट्रेस इज नॉर्मल. ये तो नॉर्मल है
0: ये तो होना ही चाहिए. आई एम से लाइक मेरा बच्चा तो आई एम से देयर वाज वन मदर हु सेड शी इज नॉट इवन बॉदर्ड शी इज नॉट इवन स्ट्रेस्ड आउट.
1: सी शी इज नॉट इवन कंसर्नड एंड शी इज नॉट इवन स्ट्रेस्ड. ये दो अलग सेंटेंसेस हो गए. एक है कि आप केयरलेस हैं आपके एग्जाम है आप पढ़ नहीं रहे आप केयरलेस हैं. लेकिन एक है आप स्ट्रेस्ड हैं. हम दोनों चीजों को सेम कैसे बोल सकते हैं.
0: लेकिन हम दोनों चीजों को एक ही मानने लग गए हैं.
1: अभी एक है कि मेरा एग्जाम है कल मुझे पढ़ना है पर मैं पढ़ नहीं रही. दिस इज केयरलेसनेस. तो कोई कहे कि यू आर नॉट कंसर्न्ड या यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर स्टडीज. लेकिन एक है कि मुझे इतना ज्यादा वो यू नो दर्द ने घेर लिया है कि अब क्या होगा कल क्या होगा मेरे से नहीं होगा ये तो बहुत मुश्किल है. अगर मेरा नंबर ठीक नहीं आया तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे. ये जो एक होल विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट्स जो हमें पकड़ लेता है तो हम पढ़ने भी अगर बैठते
0: पढ़ाई
1: तो हमसे पढ़ाई नहीं होती और तब हम कहेंगे कि आई एम अंडर स्ट्रेस. एंड तब ऐसी स्थिति में हम पढ़ते भी हैं लेकिन इट डजंट रियली गो इन, क्योंकि माइंड तो मन नहीं तो पढ़ना है बैठ के, तो माइंड एंड इंटेलेक्ट हैज टू सिट एंड स्टडी, लेकिन वो मन तो इस साइकिल ऑफ थॉट्स में चला गया है तो वो उसमें कैसे जाएगा. और फिर इतना पढ़ने के बावजूद भी जो हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए it doesn't really happen that way.
0: And then we say कि हमने इतना काम किया था और
1: क्योंकि कितनी बार हम स्कूल में कहा करते थे कि मुझे सब कुछ आता था, यू नो आज मुझे एग्जाम में सब कुछ आता था लेकिन मेरे से ये केयरलेस मिस्टेक हो गई. तो केयरलेस मिस्टेक यूज टू बी अ वेरी कॉमन वर्ड कि, और वो केयरलेस मिस्टेक बाद में ऐसे लगती है कि इतना ईजी था. एंड यू समटाइम्स हैव टू आस्क योर सेल्फ हाउ कुड आई मेक दिस मिस्टेक. मैंने सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कर दिए और उसमें इतनी छोटी बात पर मैं कैसे ये गलती कर सकती हूँ. But that itself is a sign कि माइंड अलर्ट नहीं था. तो माइंड ने 2+2=4 लिखने की जगह 2+2=6 लिख दिया. मतलब ये कोई ये थोड़ी है कि मैंने पढ़ा नहीं था, ये भी नहीं है कि मुझे आता नहीं था, ये भी नहीं है कि मुझे याद नहीं, यू नो कोई चीजें होती है मुझे याद नहीं आ रही उस टाइम मैंने पढ़ा था, लेकिन ये है कि सब कुछ पता होते हुए भी उस टाइम पता नहीं कैसे लिख दिया. दिस इज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ अलर्टनेस, क्योंकि माइंड पे वो एंग्जाइटी वो स्ट्रेस है. तो परफॉर्मेंस के लिए जो हम कहते हैं कि यू नो टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू, इनफैक्ट You shouldn't be under stress, but you have to be, in fact, very, very calm. आजकल तो सिखाया जाता है कि exam से एक दिन पहले be relaxed, be calm. क्योंकि जितना आपने किया है, it's important कि वो आप best देकर आएं, बजाय कि आप इतना upset हो जाएं कि जितना किया है. लेकिन ये belief system भी हम ही तो बच्चों के अंदर डालते हैं. यू नो अगर बच्चा आराम से है, आराम से पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स कहेंगे टेंशन नहीं है तुमको, कल एग्जाम है. क्यों? क्योंकि उनको बहुत टेंशन हुई हुई है. हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग टू अस. इट इज नॉट कि एग्जाम डिफिकल्ट है. ना हम क्या कहते हैं, प्रेशर बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत है या सिलेबस बहुत है. इट्स नॉट दैट. आई थिंक हमने इससे ज्यादा सिलेबस किए हुए हैं, लेकिन अभी है कॉम्पिटिशन है. लेकिन जैसे ही मैं वो कॉम्पिटिशन को एंटिसिपेट करती, मैं साथ साथ एंटिसिपेट करती इनसिक्योरिटी ऑफ इफ आई डू नॉट पास इन दैट कॉम्पिटिशन. तो मैंने तुरंत क्या क्रिएट कर लिया, फियर. फियर जैसे ही क्रिएट किया, दैट इज स्ट्रेस. फियर कोई एग्जाम देने का नहीं होता है. नो वन इज स्केयर्ड ऑफ गिविंग एग्जाम. मुझे जितना आता है आई विल गिव माय बेस्ट. फियर किस चीज का है,
0: पता नहीं जब रिजल्ट आएगा तो विल आई बी एबल टू डू.
1: अगर मैंने उतना अच्छा, सी दैट इज व्हाई वी से कि फ्यूचर में रहना क्यों इतना डैमेजिंग है. अगर आप अभी प्रेजेंट में हैं तो आप सिर्फ अभी के पढ़ने पर फोकस करेंगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं क्रिएट हो सकता. स्ट्रेस कौन सी थॉट से क्रिएट हो रहा है, अगर मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, मुझे अगर नई एडमिशन मिला, मेरा करियर, यू नो ऑल दोज थॉट्स, तो फिर पढ़ने में मन कैसे लगेगा. तो ये जो प्रेजेंट में रहने की आदत है, इसको अगर हम नेचुरल करते जाते, ये हमें हर एस्पेक्ट पे मदद करती है. जैसे कल आपने कहा यू वर जस्ट ड्राइविंग, तो मे बी दैट टाइम इट डिडंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. बट अगर आप एक प्रोजेक्ट के बीच में हैं, आप एक डेडलाइन पर काम कर रहे हैं, या जैसे आपका इस तरह से एग्जाम है, कोई ऐसी चीज होती ना, अगर हमारे मन को प्रैक्टिस नहीं होती है तो उस टाइम हम काम करने की बजाय हम ज्यादा वो फ्यूचर और फ्यूचर का फेलियर ऑलरेडी देखकर वो फियर अभी क्रिएट कर देते हैं.
0: कितनी बार हम कुछ पढ़ रहे होते हैं और वो पढ़ के हम मतलब पेज के पेज पलट जाते हैं, पूरा का पूरा पेज पड़ जाते हैं, हमें एक भी शब्द अंदर नहीं जाता.
1: दैट जस्ट शोज द पावर ऑफ द माइंड के मन कुछ एक चीज करते हुए भी मन कुछ और सोच रहा है, क्योंकि मन को प्रेजेंट में लाने की आदत नहीं है. इसी तरह बच्चे पढ़ सकते हैं, पूरा टाइम पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज सबसे कॉमन जो कंप्लेंट है बच्चों की, दैट इज कंसंट्रेशन. एंड देन दे वांट टू आस्क द एल्डर्स कंसंट्रेट कैसे करें. इट्स नॉट कॉन्सेंट्रेट कैसे करें कोई टेक्निक नहीं है, हमें किसी ने नहीं सिखाया कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है. इट इज़ जस्ट दैट राइट थॉट्स कैसे क्रिएट करें. एंड वो राइट थॉट्स फिर सिर्फ पढ़ने के टाइम आप नहीं सीख पाएंगे. यू नो हम क्या करते, पूरा साल तो कोई भी थॉट्स चल रहे, कैसे अभी चल
0: बोलते हैं कि बैठो 5 मिनट साइलेंस में बैठ जाओ.
1: अब अगर जस्ट बिफोर द एग्जाम हम 5 मिनट साइलेंस में बैठे तो कौन सी थॉट्स क्रिएट होंगे? वो साइलेंस में बैठते ही तो और सारी वो फियर वाले
0: तो डरने लगते हो और भी डर रहे होते हो.
1: यस, इट वोंट हैपन दैट टाइम. एंड दैट इज व्हाई ये जो हम आर्ट ऑफ थिंकिंग कि किस तरह की थॉट्स क्रिएट करनी है, ये अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते आए हैं तो ये ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेस क्रिएट करें फिर स्ट्रेस को कैसे फिनिश करें, लेकिन स्ट्रेस क्रिएट होगा ही नहीं. ये स्ट्रेस का क्रिएट होने का सबसे बड़ा कारण है ये फ्यूचर को एंटिसिपेट करना इस तरह से. एंड उसमें भी जैसे एंटिसिपेट करते फेलियर को अगर देख लेते और वो हमारा अभी फियर क्रिएट कर, और जब इतना फियर यहाँ क्रिएट हो जाता तो हाउ विल यू फील? अब आप उसको वर्ड स्ट्रेस दे दो, बट बी सो कि वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट्स इट मेक्स मी फील एब्सोल्युटली लो, एंड फिर वो लो फीलिंग के साथ आप प्रोजेक्ट करने बैठो या पढ़ने बैठो, हाउ कैन यू डू वेल? इट्स नॉट पॉसिबल. तो स्ट्रेस से लेकर कई एक बिलीफ सिस्टम्स हैं जिनको अगर हम चेक करें और चेंज करें और फिर कल चलें अपने जीवन की यात्रा में, आधा काम तो वहीं हो जाएगा. क्योंकि जैसे हमने कहा टेंशन तो नॉर्मल है. जस्ट आस्क एनीबडी, आप 4 साल के बच्चे से ले लो एंड ऑफकोर्स उस सीनियर एज ग्रुप तक चले जाओ, टेंशन होती है आपको? किसी को टेंशन होती है तो कहेंगे टेंशन तो सबको होती है, ये कौन सा क्वेश्चन है? टेंशन नॉर्मल है, टेंशन नेचुरल है. तो अगर वो नॉर्मल है तो आप उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे?
0: नॉर्मल है तो होती है तो क्या करना है उसे खत्म?
1: नहीं नहीं, तो वो तो फिर नॉर्मल है. यू नो लेट्स से अगर यहाँ मेरे घुटने में दर्द नॉर्मल है, मैंने बोल दिया उसको, तो फिर उस जब तक आई हैव अ रियलाइजेशन कि ये कोई चीज है जो अननेचुरल है, ये दर्द है, ये मेरा नेचुरल नहीं है कंफर्ट लेवल, तो मैं कुछ ना कुछ उसके लिए करूँ. लेकिन अगर मैंने स्वीकार कर लिया कि ये तो नॉर्मल है तो क्या होगा, उसी के साथ चलना शुरू कर देंगे.
0: उसके ऊपर आप बात काम ही नहीं करोगे ना, बाकी सारी चीजों पे काम करते जाओ.
1: आप नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मल क्या है इसका बिलीफ बहुत क्लैरिटी से चाहिए होता है. क्योंकि हम कंडीशन हैं कि जो चीज नॉर्मल है मतलब वो ठीक है. जैसे ही हमने किसी चीज को कहा कि ये अननेचुरल है तो हम उसके ऊपर कुछ मेहनत करते. आप घर पहुंचे, आज आपको थोड़ा सा फीवर है तो आपने देखा थर्मामीटर पे 100 है, 101 है, तो आपको मालूम है कि ये नॉर्मल नहीं है. बिकॉज यू नो दैट इट इज नॉलेज. नॉलेज है कि ये जो ट्राइंगल मार्क जहाँ बना है वो ही नॉर्मल है. वो मर्क्यूरी उससे इतना भी ऊपर होगा ना थोड़ा सा, नॉर्मल नहीं है, मुझे बुखार है, आई विल इमिजिएटली टेक मेडिकेशन एंड आई विल गो ऑन टेकिंग माई मेडिसिन आफ्टर एवरी 6 आवर्स टिल दैट मर्क्यूरी कम्स टू दैट नॉर्मल मार्क. उसके बाद अगर मुझे नहीं भी ठीक लग रहा होगा ना, थोड़ा मेरे को अभी भी लग रहा है थोड़ा फीवरिश, लेकिन अगर मर्क्यूरी थर्मामीटर में दिख गया कि ये नॉर्मल है,
0: then I'll not take the medicine.
1: Then I will not. See, that's why what is normal is so important. I will take medicine only जब तक मुझे वो पता है कि ये नॉर्मल नहीं है. अब टेंशन के लिए क्यों नहीं मेडिसिन ले रहे? क्योंकि हमने कह दिया ये ही
0: नॉर्मल है. ये तो है, ये तो आज के इस पूरे युग में.
1: तो फिर हम उसको थोड़ी खत्म करने का कोई भी प्रयास करेंगे. इसलिए पहले तो ये बिलीफ सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से शेक करना पड़ेगा कि स्ट्रेस इज नेचुरल, स्ट्रेस इज नॉर्मल, दिस इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. इसको चेक करना पड़ेगा कि टेंशन कुछ भी नहीं है, इट्स अ पेन. ये एक दर्द है जो आता है मुझे बताने के लिए कि मुझे कुछ चेंज करना है.
0: एक्चुअली हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस को कहते हैं नॉर्मल है, क्योंकि जैसे ही वो ज्यादा होने लगता है ना तब हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता, तब हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं. लेकिन थोड़ा
1: लेकिन तो भी हम उसके सॉल्यूशंस कहाँ ढूंढते
0: हैं? हाँ, वो जिस भी तरह से ढूंढ रहे होते
1: कहाँ ढूंढते हैं कि ये सब ठीक हो जाए, हाँ, तब मेरा स्ट्रेस ठीक हो जाएगा. यस, दैट्स ऑल्सो वेयर आर वी लुकिंग फॉर दिस सॉल्यूशन. तो वी आर लुकिंग फॉर दिस सॉल्यूशन परिस्थिति के अंदर, कि परिस्थिति ठीक हो जाए, किसी भी तरह परिस्थिति.
0: इस सिचुएशन में आपका ऐसे बिहेव करना तो नॉर्मल है, आपका स्ट्रेस में आना मतलब एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे.
1: तो फिर वही है ना, हमने अगर हम बच्चे को ये समझा सकें कि एग्जाम के टाइम पर रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है. कभी ये कहा? कि रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है.
0: आई डोंट रिमेंबर
1: एनीवन या रिलैक्स्ड ही रहना है बच्चे. हाँ. नहीं, टेंशन होना तो नॉर्मल है. और खुद ही इतने टेंस्ड होते हैं, खुद के फेस और बॉडी.
0: ये कहते जाते हैं कि आप रिलैक्स रहो, रिलैक्स
1: वो रिलैक्स्ड रहो. हाँ. भी कैसे कहते हैं, इट इज सो.
0: और वो हम खुद इतने टेंशन में होते हैं
1: एग्जाम के टाइम पे. द होल एनर्जी इन द हाउस इज वेरी डिफरेंट.
0: नोबडी कैन कम, यू नो. उसके राहुल के एग्जाम्स है ना, तो फ्रेंड्स नहीं आ सकते, रिलेटिव्स नहीं आएंगे. इट्स लाइक अमेजिंग द वे वी क्रिएट.
1: तो एक है कि बच्चे को पढ़ना है, उसको साइलेंस चाहिए, एक अलग कमरा आप दे दो, सब कुछ कर दो. लेकिन घर में जितना हो सके वायुमंडल भी हमें नॉर्मल ही रखना पड़ेगा. जितना हम नॉर्मल रखेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे, तो बच्चा भी फील करेगा ना कि हाँ सब कुछ नॉर्मल तो है, मैं एक एग्जाम ही तो देने जा रहा हूँ.
0: अंदर से नहीं नॉर्मल होते ना हम.
1: वही ना, अंदर होंगे तो बाहर भी तो ऑटो. लेकिन हमने वो एग्जाम को इतना बड़ा, अब हो क्या रहा है, पहले तो फिर भी साल में एक बार एग्जाम आता था, चलो पूरा साल तो चलता. अब वो एग्जाम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है.
0: सितंबर में आएंगे पहले फरवरी बोर्ड होंगे,
1: फिर वो वीकली कुछ टेस्ट होंगे, ये व्हाटएवर. तो क्योंकि एवरी एग्जाम एंड एवरी टेस्ट इज बिकमिंग लाइक दिस, तो ओवरऑल पूरा साल ही बच्चे का कैसे बीत रहा है, जैसे कि वो एक हाई प्रेशर उसमें यू नो वर्क कर रहा है. वो माइंड के लिए बहुत डैमेजिंग है. वही चाइल्डहुड जो हमारे लिए सबसे ब्यूटीफुल पीरियड हम कहते थे, आज वही बच्चे कहते हैं कि इट इज वेरी वेरी स्ट्रेस. सीन इवन विद बच्चे जो प्ले स्कूल के लिए एडमिशन के लिए जाते हैं, स्कूल्स के एडमिशन के लिए जाते हैं, उनको कितना स्ट्रेस है. डू यू थिंक एक 3 साल का बच्चा एक स्कूल के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसको भी पेरेंट्स क्यों, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा ये स्ट्रेस में है कि नहीं मिला तो. ये जो फियर क्रिएट हो रहा है वो बच्चे को उस एज से ही हम वो डेवलप कर देते कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं हुआ तो तुम

0: होगा, पढ़ाना होगा, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करानी होगी, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा. सिर्फ हमें एक चीज़ नहीं करनी होगी, फियर नहीं क्रिएट करना. वी नॉट सेइंग वी नॉट गोइंग टू स्टडी, ऑब्वियसली जो है फिर माहौल, हमें माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता. स्ट्रेस वर्ड को ही अगर हम देखें तो साइंस में स्ट्रेस वर्ड को हम लेते तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. तो प्रेशर तो है ही ना बाहर. पहले तो कभी स्कूल में आई डेंट हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू. वो मेरे पेरेंट्स गए एडमिशन करा के वापस आ गए और कहा, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ द सिटी, और कहा आपका एडमिशन हो गया, आपको स्कूल जाना है. आज वो छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कितनी मेहनत से गुजरते. तो ठीक है, प्रेशर चेंज हो रहा है, हम बैठकर उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते. लेकिन जितना प्रेशर न्यूमरेटर है ना बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर रेजिलियंस इनर स्ट्रेंथ, उस प्रेशर को फेस करने की मेरी अपनी आंतरिक शक्ति. मेटल शीट्स हैं, इंडस्ट्री में हम जाते हैं अलग अलग मेटल शीट्स हैं, हर मेटल शीट के ऊपर सेम प्रेशर अप्लाई किया जाता, लेकिन हर मेटल का स्ट्रेस फैक्टर अलग अलग, क्योंकि इनर स्ट्रेंथ अलग अलग. तो हम में से भी हर एक की अपनी अपनी एक आंतरिक शक्ति है. प्रेशर हर एक के ऊपर इक्वल है, लेकिन जिसकी जितनी इनर स्ट्रेंथ होगी वो उस प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से फेस कर पाएगा. आज क्या हो रहा, प्रेशर तो बढ़ रहा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर पर ध्यान नहीं दे रहे और फियर क्रिएट करते जा रहे, फियर
1: उसको तो वीक करते जा रहे,
0: डिनोमिनेटर घटता जा रहा है तो न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर घटता जा रहा है,
1: ऑफ कोर्स स्ट्रेस
0: फैक्टर बढ़ता जा रहा है इतना ज्यादा. एंड न्यूमरेटर इज ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट ना, क्योंकि परिवर्तन बहुत तीव्र गति से है. लेकिन क्योंकि ध्यान नहीं रखा, डिनोमिनेटर भी बहुत तीव्र गति से घटता जा रहा. And stress factor is increasing very, very fast. Yes. It will go beyond our control.
1: We really need to see, you know. और हम ये कहते हैं कि हमने तो अपने आप को situations के accordingly इसलिए create कर रहे हैं. You know, situations ही ऐसी हैं, तो हम अपने आप को उन्हीं के उसी के according तो तैयार करते जा रहे हैं. वो तैयारी जो बाहरी है, जो चीजें करनी है, वो तो ठीक है. Amazing. We always have to remember this. Stress is equals to pressure upon my inner strength. You know. तो अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शन है मेरी इनर स्ट्रेंथ पे. तो अगर मेरी इनर स्ट्रेंथ, प्रेशर को तो हमें, क्योंकि हम बाहर की चीज़ों को कुछ नहीं कर सकते, जो मेरी इनर स्ट्रेंथ है उसे मैं जितना बढ़ाती जाऊंगी, बच्चे की इनर स्ट्रेंथ को जितना बढ़ाती जाऊंगी, स्ट्रेस अपने आप कम होता जाएगा. इट्स ब्यूटिफुल.
0: एंड स्ट्रेस कम होता जाएगा, परफॉर्मेंस अपने आप अच्छी होती जाएगी. हम सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस्ड है. जो स्टेबल होगा, कॉन्फिडेंट होगा, काम होगा, वो परफॉर्म नहीं करे अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता. इट्स नॉट पॉसिबल.
1: वेरी ट्रू. और हम अपने आप भी देखते आए हैं कि जब हम जितना अभी तक भी, तो बच्चे टेंथ से पहले भी तो बच्चा पढ़ रहा होता था और वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा होता था. मतलब बच्चा अपने आप अपनी बहुत सारी चीजें कर रहा था. तो हमें अपने आप को देखना है कि हमने एटमोसफियर कैसा क्रिएट किया है, पूरा जो हमने अपने लिए जो स्ट्रेस फैक्टर है उसे कितना ज्यादा आगे बढ़ाया है. तो वही तो फिर फ्लो होके बच्चे तक जा रहा है. सिचुएशंस, टीचर, स्कूल, लोग, सब कुछ कहते रहेंगे. वो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो बढ़ता ही जाएगा. अगेन, जितना वो बढ़ेगा उतना ही मुझे अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को, और मैंने देखा, अमेजिंग, आई नेवर रियलाइज इट, कि जितना वो बढ़ रहा था मैंने न्यूमरेटर को एक्चुअली कम करती गई हूँ मैं, क्योंकि वो मैं डरती गई डरती गई डरती गई. तो मुझे ना डरते हुए अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाना है. यू नो, इट्स एक्चुअली सो ईजी इफ यू लुक एट इट, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला कभी नहीं समझा था. थैंक यू सिस्टर शिवानी. लाइक आज हम एक फैक्टर पर बात कर पाए हैं, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वी हैव हिट. तो इस पर आप जरूर सोचें. और यू नो, अभी तक का जो बिलीफ सिस्टम्स पर हम जी रहे थे कि जितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मैंने अपने आप को उसी हिसाब से तो मोल्ड किया है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो ऐसी चीजें करनी ही पड़ेंगी. करना और किस स्थिति में मैं करूँगा, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे. पढ़ाना भी है आपको बच्चों को, आपको सब कुछ करना है, तैयारी भी करानी है, बट किस थॉट प्रोसेस के साथ, किस स्टेज में रहकर कराना है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके लिए राजयोग में हम बार बार मेडिटेशन की बात करते हैं. इट हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ आर लाइफ. तो अगर कोई मन में बात उठती है, कोई सवाल उठ रहा है, स्ट्रेस से जुड़े हुए आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, आपका स्वागत. आप हमें कॉल करें या फिर आप हमें ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है om shanti@bkmail.com.

org. स्ट्रेस से जुड़ा एक बिलीफ सिस्टम कि स्ट्रेस इज नॉर्मल, इसको आज हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाए कि कैसे इसको नॉर्मल मान के हमने अपनी लाइफ में स्ट्रेस को बढ़ाया है। आसान सा सोल्यूशन है, एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करें, स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल और स्टेबिलिटी इज नॉर्मल, रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है। फिर देखें कि कैसे जो सोल्यूशंस निकलते हैं। थैंक यू सो मच ओम शांति, और आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें करेंगे। ओम शांति।

0: आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेम पंत अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे विनोबा जी द्वारा लिखित कुरान सार।
1: प्रेम पंत अहिंसा का
2: कुरान सार का संपादन करते हुए विनोबा जी कहते हैं कि साइंस ने दुनिया छोटी बनाई और वह सब मानवों को नज़दीक लाना चाहता है। ऐसी हालत में मानव समाज फिरकों में बटा रहे, हर जमात अपने को ऊंचा समझे और दूसरों को नीचा समझे, यह कैसे चलेगा? हमें एक दूसरे को ठीक से समझना होगा, एक दूसरे का गुण ग्रहण करना होगा। इसी उद्देश्य से धम्मपद की पुनर्रचना मैंने की थी और गीता के बारे में मेरे विचार गीता प्रवचनों के जरिए लोगों के सामने पेश किए थे। बरसों से भूदान के निमित्त मेरी पदयात्रा चल रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य दिलों को जोड़ने का रहा है। बल्कि मेरी जिंदगी के कुल काम दिलों को जोड़ने के एकमात्र उद्देश्य से प्रेरित हैं। कुरान सार में वही प्रेरणा है। मैं आशा करता हूँ परमात्मा की कृपा से वह सफल होगी। विनोबा जी ने जो धार्मिक साहित्य लिखा है, चुना है या अनुदित किया है, वह धर्म प्रसार की दृष्टि से ही किया है। पर जिसे हम स्थूलतः धार्मिक साहित्य कहते हैं, उसके लेखन पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मानो उन्हें वह आशीर्वाद ही फलित हुआ है जो महाराष्ट्र में भजन के अंत में ईश्वर से मांगा जाता है। वह आशीर्वाद नित्य ही मांगा जाता है और सामूहिक रूप से मांगा जाता है। सैकड़ों वर्षों से यह रीति चली आई है। मराठी भाषा में मूल आशीर्वाद का अभंग इस प्रकार है। हे प्रभु, हमारे करुणामय हरि के सभी दासों को, भक्तों को, इस पूरी मंडली को तू शाश्वत जीवन प्रदान कर। वे कभी भी किसी भी समय किसी भी प्रकार की कल्पनाओं से, मानसिक तरंगों से पीड़ित, त्रस्त और उद्वेलित ना हों। हमारी यह संत मंडली सदैव परम सुख का अनुभव करे। इन्हें तू सुखी जीवन प्रदान कर। हमारे विष्णु के इन निष्ठावान सेवकों को क्षुद्र अहंकार का कभी स्पर्श तक ना हो, ये सदा तेरे साथ समरस रहें। भक्त शिरोमणि नामा कहते हैं, जिनके मुख में सदैव विश्व प्रतिपालक आनंदमय प्रभु पांडुरंग का नाम रहता है, जिनका एकमात्र आधार तू ही है, उनका सदैव कल्याण हो, इस संत समाज का सतत अभ्युदय हो और इसे निःश्रेयस की प्राप्ति हो। हम मानते हैं कि इस आशीर्वाद ने उनसे धर्म पालन करवाया है और उसी के अनुसरण में कुछ लिखवाया है। कुरान शरीफ का काम भी इसी तरह ईश्वर ने उनसे करवाया है, ऐसा हम मानते हैं। कुरान शरीफ के विनोबा जी के अध्ययन का श्री गणेश हमारी जानकारी के अनुसार इस प्रकार है। वर्धा आश्रम में औरों की तरह एक मुसलमान बालक भी आया। उसने सुना था कि वहाँ जाने से वह कुछ जीवनदायी विद्या सीख लेगा। उसने आश्रम में कातना सीखा, धुनना बुनना, राष्ट्रीय जीवन जीना सीखा। आश्रम में जो प्रवचन होते थे उन्हें भी वह सुनता था। कुछ दिन के बाद उसकी इच्छा हुई कि वह विनोबा जी से कुरान पढ़े। उसने विनोबा जी से प्रार्थना की कि वे उसे कुरान पढ़ाएं। विनोबा जी धर्म विषय ग्रंथों के अभ्यासी थे। उन्होंने अंग्रेजी में तो कुरान पहले ही पढ़ी थी, पर अब इस बच्चे को पढ़ाने के लिए कुरान का मराठी अनुवाद मंगा लिया और उसे देख लिया। फिर अन्य भाषाओं के कुछ और अनुवाद भी देख लिए और साथ ही मूल ग्रंथ ही देखने का भी निश्चय कर लिया। जैसे कि उनकी विचार पद्धति है, उन्होंने सोचा कि इस कार्यकर्ता की इच्छा द्वारा उन्हें एक ईश्वरीय संकेत मिला है कि वे कुरान का अभ्यास करें। तभी से उनका कुरान का अध्ययन तीव्रता से चलने लगा। हमें जहाँ तक स्मरण है, यह अभ्यास सन 1937 से प्रारंभ हुआ। कुरान शरीफ चूंकि अरबी में था, इसलिए उसके शुद्ध उच्चारण की समस्या थी। कुरान पढ़ने के लिए पवनार के देहात में जो मुल्ला भाई मिल सकते थे, उन्हीं से विनोबा जी कुरान पाठ के सबक लेने लगे। स्पष्ट है कि ऐसे मुल्ला लोगों को केवल पाठ करना आता है, लिख वे नहीं सकते और अर्थ वे शायद ही समझते हों। कुरान पाठ करने में उनका उच्चारण शास्त्रीय नहीं होता। विनोबा जी ने कुरान का उच्चारण कैसा हो इसके लिए तद्विषय ग्रंथों के आधार से जानकारी प्राप्त की, भिन्न भिन्न भाषाओं के उच्चारण शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। शुद्ध उच्चारण करने की उनकी अपनी विशेष क्षमता थी और उसका वे आग्रह भी रखते थे। फलतः कुरान शरीफ की आयतों का उन्होंने अस्खलित और सम्यक रूप से उच्चारण आरंभ किया। भारत में अनेक स्थानों पर लोग कुरान में आए शब्दों के इकार और उकार का उच्चारण फारसी पद्धति से करते हैं, परंतु विनोबा जी ने कुरान पाठ में मूल अरबी की ही पद्धति का उच्चारण आरंभ किया। उसे सुनकर स्थानीय मुल्ला तो दंग रहा ही, अन्य लोग भी विस्मित होकर रह गए। गांधी जी को थोड़े दिनों में पता चला कि उनका विनोबा कुरान का अध्ययन कर रहा है, तो कहते हैं कि उन्होंने कहा, हम में से किसी को तो भी ये करना ही था, विनोबा कर रहा है, यह आनंद का विषय है। उच्चारण बिल्कुल शास्त्र शुद्ध हो, इसलिए कुछ दिनों के बाद विनोबा जी ने एक युक्ति और निकाली। उन्हें एक गुरु मिल गया। वह गुरु था ऑल इंडिया रेडियो। उन दिनों एक अरबी कारी द्वारा अरब से होने वाली कुरान की तिलावत अर्थात कुरान पाठ दिल्ली रेडियो से प्रसारित होता था। विनोबा जी रेडियो खोल देते और अपनी सहज स्वभाव सिद्ध एकाग्रता से वे कुरान पाठ सुनते। इस पर से उन्होंने कुरान के शब्दों के उच्चारण की पद्धति को पकड़कर उसे अपना लिया। अब जब विनोबा जी कुरान पढ़ते तो उनके उच्चारण हम जैसों को तो बहुत अभिनव प्रतीत होते। इस प्रकार कुरान पाठ का आयोजन होते ही विनोबा जी कुरान का अर्थ समझने के लिए स्वयं अपने शिक्षक बने। उन्होंने अरबी आयत और उसके सामने अंग्रेजी तर्जुमा की किताब हाथ में ली, एक आयत पढ़ी और उसका अर्थ पढ़ा। ऐसे कई पारायण किए, फिर शब्द और प्रत्यय, क्रिया और उसके रूप, अव्यय और वाक्य एवं उसकी प्रक्रियाएं देखना आरंभ किया। इस प्रकार कई पारायण करके विनोबा जी ने अपने लिए उसका एक व्याकरण तैयार किया और इसके उपरांत अरबी व्याकरण मंगाकर उससे उसकी तुलना करके ठीक कर लिया। अब उन्हें आयतों का अर्थ, शब्दों की रचना और व्याकरण की जानकारी हुई और जैसी कि उनके अध्ययन की सामान्य पद्धति है, शब्दों का मूलगामी अर्थ भी उनके हाथ आ ही गया। विनोबा जी का कुरान का यह अध्ययन जेल में भी चला। अध्ययन काल में विनोबा जी को कुरान के जितने भी अंग्रेजी अनुवाद मिल सके उन्होंने देख डाले। उन अनुवाद ग्रंथों में जिन विशेष ग्रंथों का उल्लेख मिला उन ग्रंथों को भी मंगाकर उन्होंने पढ़ डाला। विनोबा जी जिस भक्ति भाव से कुरान पढ़ते वह भक्ति भाव उनकी आंखों से आंसुओं की प्रेममयी धारा बहाता। कुरान शरीफ में भक्तों का इसी प्रकार का एक जिक्र आया है जिसका अर्थ करते हुए कई अनुवादकों ने आंखें तर हो जाती हैं, आंखें भर आती हैं, ऐसा अर्थ किया है। विनोबा जी को देखते हुए हमें यह विश्वास हो गया कि वहां उस शब्द का अर्थ आंखों में आंसू उमड़ आते हैं, वे सतत प्रवाहित होते हैं, इस प्रकार ही करना ठीक होगा। कुरान में मक्की अर्थात मक्का में अवतरित हुए सूरा अर्थात प्रकरण में विनोबा जी को बहुत अधिक आनंद की अनुभूति होती थी। उन्होंने अपनी यह स्थिति धर्मनिष्ठ बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान से कही। वे वर्धा में आते थे तो दोनों की मुलाकात होती थी। बादशाह खान विनोबा जी से सहमत हुए और उन्होंने बताया कि उनका अपना भी ऐसा ही अनुभव है। उन्हीं दोनों कहते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद एक बैठक के लिए वर्धा पधारे थे। विनोबा जी बापू से मिलने गए। आज़ाद की उपस्थिति में बापू ने विनोबा जी से कुरान पाठ कराया। मौलाना विनोबा जी के उच्चारण से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें जब पता चला कि देहात के एक मुल्ला से विनोबा ने कुरान पढ़ी है तो उच्चारण की इतनी स्पष्टता का कारण वे समझ ना सके। जब विनोबा जी के सारे प्रयत्नों की जानकारी उन्हें मिली तभी उन्हें समाधान हुआ। विनोबा के कुरान संबंधी ज्ञान से मौलाना बहुत प्रसन्न हुए। मौलाना आज़ाद का कुरान संबंधी ज्ञान अत्यंत विस्तृत था और इसके लिए वे सारे भारत में प्रख्यात थे। उन्होंने पहले सूरा से 18वें सूरा तक का ही अनुवाद करके प्रकाशित किया था। विनोबा जी की बड़ी इच्छा थी कि मौलाना कुरान शरीफ के अपने अनुवाद का शेष कार्य पूरा करते और सूरे कहफ से सूरे अन्नास तक का तर्जुमा पूरा कर डालते। कहते हैं कि मौलाना से जब कभी कोई इस संबंध में निवेदन करता था तो वे कहते थे, मस्तिष्क में तो सारा भरा पड़ा है, कभी कागज पर भी उतर आएगा, पर उसके लिए समय मिलना चाहिए। दुख की बात है कि वह समय उन्हें नहीं मिल सका और वह तर्जुमा हमें नहीं मिला। उनसे हमें गुबारे खातिर हिंदुस्तान की आज़ादी की जीत तो मिली, पर तर्जुमानुल कुरान का दूसरा हिस्सा नहीं मिला, सो नहीं ही मिला। विनोबा जी से कोई यदि कुरान के किसी महत्वपूर्ण विषय या शब्द के संबंध में पूछता तो वे तुरंत कुरान का पन्ना पलटकर उसे बता देते, ऐसी उनकी कुरान संबंधी ज्ञान की स्थिति। इसी कारण कुरान सार तैयार करते समय सारे विषयों का समग्रता से ध्यान रखकर विनोबा जी कुरान की आयतों का सुचारू रूप से चयन कर सके। विनोबा जी के कुरान शरीफ के अध्ययन में बीच में कुछ व्यवधान पड़ा था, पर अजमेर के भूदान सम्मेलन के पूर्व विनोबा जी ने फिर कुरान शरीफ का अध्ययन शुरू कर दिया था। भूदान पदयात्रा में वे जिस जिस प्रांत में जाते थे वहाँ के लोगों के हाथ में जो धर्म ग्रंथ होता था उसका गहराई से वे अध्ययन करते थे। जब वे अजमेर शरीफ की ओर जा रहे थे तब सहज ही कुरान शरीफ ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। 1.5 साल की मेहनत से रूहुल कुरान नामक अरबी नाम से यह पुस्तक तैयार हुई। कश्मीर के विद्वान हाफिज मौलाना मोहम्मद साहब मसूदी ने ठीक ही कहा कि विनोबा जी ने यह जो काम किया, इस काम के लिए कोई कमेटी भी बैठाई होती तो उसे यह काम करने में कई वर्ष लग जाते। कुरान में जो जो विषय आए हैं उनमें से जीवन के लिए सारभूत होने वाले जो अंश हैं वे इस पुस्तक में उपस्थित हैं, इसलिए इस पुस्तक का नाम कुरान सार, जैसा कि उन्होंने उर्दू भूदान तहरीक के संपादक श्री अहमद फातमी साहब को एक पत्र में लिखा था, कुरान की रूहानी तालीम अर्थात आध्यात्मिक सीख दुनिया के सामने पेश करने के लिए इस किताब का उपयोग होगा। धर्म ग्रंथ लेखन करते समय विनोबा जी ने एक संस्कृत श्लोक तैयार किया है। यह श्लोक नित्य स्मरणीय श्लोक का स्थान प्राप्त कर सकता है। श्लोक यह है।

गूढ़ शोधनम। यदि संभव होता तो यह पुस्तक जिस प्रकार संपादित हुई उसी प्रकार से छप जाती, जैसा कि धम्मपद का हुआ। पाली में मूल ग्रंथ और संस्कृत में संपादन, संपादन में विनोबा जी की जैसी विशिष्ट दृष्टि थी वैसी ही अर्थ के संबंध में भी थी, परंतु उनकी इस विशेष दृष्टि का ज्ञान उनके निकटवर्ती लोगों को है। इस कार्य के लिए विनोबा जी के पास समय कहाँ। अनेक धर्म प्रेमी लोगों ने विनोबा जी से कई बार प्रार्थना की कि ऋग्वेद से हमें आप कोई पाथेय निकाल कर दीजिए। वो विनोबा के ही हाथ का वेद प्रसाद चाहते थे। 36 साल वेदाध्ययन, अखंड वेदाध्ययन विनोबा जी ने किया। मूलभूत और विशिष्ट दृष्टि से उन्होंने उसका अवगाहन किया, पर विनोबा जी के पास उसका चयन करने को समय कहाँ। और भी दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की ओर वे थोड़ा सा भी ध्यान देते तो दो अनमोल ग्रंथ आज समाज को मिल सकते थे। उनकी निकटवर्ती मंडली जब कभी उनसे इस विषय में निवेदन करती तो विनोबा जी कहते, आप हमें सारे भारत का ग्राम स्वराज करा दें तो हम निश्चिंत होकर आप लोग जिस प्रकार का ऋग्वेद का सार चाहते हैं उसी प्रकार का सार तैयार कर देंगे। कुरान का यह चयनकार आरंभ हो चुका था और आरंभ किया हुआ कार्य बीच में छोड़ना ठीक नहीं होगा, ऐसा शायद उन्हें लगा। इसी कारण या अन्य किसी कारण से वस्तुतः राम राम करके बड़ी उत्कंठा और कठिनाई से यह पुस्तक उनके अंतेवासियों को मिल सकी है। कुरान संबंधी व्याख्यान की अगर बात की जाए तो हम दो नहीं हैं, तीन हैं और तीसरा बहुत महान है, यह विचार इस भूदान पदयात्रा में कितनी बार विनोबा ने सुनाया है। और भूदान गंगा में इस विषय की विस्तृत जानकारी दी है। सन 1945 में लिखी राम नाम एक चिंतन पुस्तक में उन्होंने कुरान में जिस शिर्क का जिक्र आता है उसकी बहुत ही अभिनव और विकसित व्याख्या की है। इंदौर में दिए हुए आध्यात्मिक प्रवचनों में सूर्य को प्रणिपात ना करो, उसके निर्माता को प्रणिपात करो, इस विषय का जो विवेचन उन्होंने किया है उसमें उनकी व्यापक और समन्वयी वृत्ति का स्पष्ट दर्शन होता है। इल्मुल यकीन अर्थात निश्चित ज्ञान और ऐनुल यकीन अर्थात निश्चित साक्षात्कार। इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन का उल्लेख तो उनके अनेक व्याख्यानों में आया है। और तेरा काम संदेश पहुंचाना है और मेरा काम हिसाब लेना है, इसका जप भी उन्होंने अनेक बार किया है। अजमेर की दरगाह शरीफ में खड़े होकर वहां पर उपस्थित लोगों के निमित्त से उन्होंने हम सब भारतवासियों के लिए प्रभु का जो संदेश सुनाया वह कितना महत्वपूर्ण है। हक सत्य सब्र धृति और रहमत करुणा, हक सब्र और रहमत की ताकीद एक दूसरे को करो, उनका यह व्याख्यान बहुत ही प्रसिद्ध है। कश्मीर में दिए गए उनके कई व्याख्यान कुरान सार पर आधारित हैं, पर विशेष रूप से कुरान की तालीम, मजहब के अरकान अर्थात धर्म के स्तंभ, खुदा किसे मदद देता है और कुरान की तिलावत, ये व्याख्यान उन विषयों को अच्छी तरह समझाते हैं। विनोबा द्वारा संपादित कुरान सार के चयन में विनोबा जी ने सांपराय के विषय पर विस्तार से अवतरण लिए हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि बहिष्ट अर्थात स्वर्ग और दोजख अर्थात नरक ये बच्चों को या बालवत समाज को समझाने की बातें हैं, पर विनोबा जी मानते हैं कि स्वर्ग नरक उतने ही वास्तविक हैं जितना हमारा जीवन वास्तविक है, और इसीलिए उन्होंने कुरान के इस विषय को छोड़ा नहीं। गीताई चिंतनिका में उन्होंने इस विषय की विशेष रूप से व्याख्या की है। इससे इस संबंध में विनोबा जी के विचारों की कल्पना की जा सकती है।
कुरान के नैतिक व्यवस्था के संदर्भ की बात करें तो पंच महाव्रतों को विनोबा जी ने अपने कुरान सार में कुरान के आधार से महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सूद अर्थात ब्याज को कुरान शरीफ में नाजायज माना है। इस विषय पर जितने महत्वपूर्ण अवतरण मिले हैं उन्हें विनोबा जी ने कुरान सार में उद्धृत किया है। ब्याज पूर्णतः त्याज्य है, ऐसा ही विनोबा जी मानते हैं। ग्रामदान द्वारा जिस समाज रचना की स्थापना के लिए विनोबा जी प्रयत्नशील हैं वह ऐसी रचना है जिसमें ब्याज के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। इस विषय में लोग बीच की राह निकालना चाहते हैं और उस पर तरह तरह के वाद खड़े करते हैं, पर हमारा स्पष्ट मत है कि कुरान शरीफ में सभी प्रकार के ब्याज निषिद्ध माने गए हैं। कुरान सार में 9 खंड हैं। नंबर 1 ग्रंथारंभ, नंबर 2 ईश्वर, नंबर 3 भक्ति रहस्य, नंबर 4 भक्त अभक्त, नंबर 5 धर्म, नंबर नीति, नंबर 7 मानव, नंबर 8 प्रेषित अर्थात रसूल, और नंबर 9 गूढ़ शोधन। ग्रंथारंभ में मंगलाचरण अर्थात अल्फातिहा और ग्रंथ गौरव अर्थात जलालते किताब, ऐसे 2 अध्याय हैं। ग्रंथ गौरव अध्याय में ग्रंथ प्रकाश, ग्रंथ स्वरूप और ग्रंथ पठन विधि, इस प्रकार 3 प्रकरण हैं। नंबर 2 ईश्वर, इसके बाद ईश्वर खंड आरंभ होता है। इसमें 1 एवाद्वितीय, देवता निषेध, ऐसे 2 प्रकरण हैं। इसके उपरांत प्रभु का स्वरूप ज्ञानमय है, इसमें परमात्मा प्रकाश स्वरूप और सर्वज्ञ, ऐसे 2 प्रकरण आते हैं। इसके बाद उसकी करुणा का दर्शन कराया जाता है और उस दयामय अध्याय में दयालु और ईश्वरीय देने, ये 2 प्रकरण हैं। इसके उपरांत ईश्वर का अनंत कर्तत्व हमें समझाया गया है। कर्ता अध्याय में सृष्टिकर्ता, ईश्वर की रचना और ईश्वरीय संकेत, इस प्रकार 3 प्रकरण किए गए हैं। इसके अनंतर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति का वर्णन आता है। उस सर्वशक्ति अध्याय में सर्वशक्तिमान, इच्छा समर्थ और उसकी अवर्णनीयता का वर्णन है।

उपदेश, सृष्टिकृत प्रार्थना, निष्ठा, त्याग, समर्पण, कसौटी एवं आश्वासन और धीरज, ये प्रकरण है। सत्संगति अध्याय में सत्संग का ही प्रकरण है और अनाशक्ति में संसार के अनित्यत्व का भान और वैराग्य, ये दो प्रकरण हैं। इसके बाद भक्त अभक्त प्रकरण होता है। इस खंड में भक्त और अभक्त, विधायक और निषेधक, ऐसा मिलकर दोनों के वर्णन से विषय पूरा होता है। इस भाग में ये दो अध्याय ही हैं। भक्त के सुलक्षणों में उनके अनेक पहलू, उनकी प्रार्थनामयता, उनकी निष्ठा, सहनशीलता, अहिंसा वृत्ति, दानशीलता आदि का वर्णन देते हुए अंत में उन्हें देवभूतों से जो आशीर्वाद प्राप्त होते हैं उनका उल्लेख करके हम भी ऐसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखें, ऐसी कामना की गई है। इसके बाद अभक्तों के अवलक्षण समझाए गए हैं। वे नास्तिक हैं, अविश्वासी हैं, भ्रांत चित्त वाले, मोध कर्माण और नरक भाज होते हैं। उनका दर्शन विपरीत होता है। उनके कर्म कैसे विफल होते हैं यह दिखाकर उनकी नारकीय दुर्गति का दृश्य सामने खड़ा किया गया है। इस प्रकार भक्त तथा अभक्त का लक्षण और कुलक्षण देकर अन्वय और व्यतिरेक न्याय से विधेयक और निषेधक दोनों पद्धतियों से हमें पूरी जानकारी मिलती है। क्रम 5 और 6, धर्म और नीति। धर्म विचार एवं नीति के दो खंड हैं। धर्म खंड में धर्म विचार है, जिसमें धर्म निष्ठा, धर्म सहिष्णुता और धर्म विधि, ऐसे 3 प्रकरण हैं। इसके अनंतर नीति का खंड शुरू होता है। इसमें नीति विषयक 5 महाव्रत, नीति बोध और शिष्टाचार, ऐसे 3 प्रमुख विषय आए हैं। भव्य वातावरण का दर्शन करने वाला प्रकरण इसमें निहित है। अंत में स्वर्ग का लाभ और उससे प्रभु कृपा का अनंत विस्तार हमारे सामने उपस्थित किया जाता है। मेरे पास स्वर्ग से भी अत्यधिक है। कुरान शरीफ के इस प्रभु प्रसाद को बांटते हुए कुरान सार के संपादक ने हम पर बहुत उपकार किए हैं। स्पष्ट है कि कुरान सार में कुरान शरीफ के केवल अवतरण हैं, पर इन अवतरणों की प्रकरण रचना देखकर हम स्तंभित हो जाते हैं और यही उद्गार हमारे मुंह से अनायास निकल जाता है कि हे प्रभु, तू जिस पर अपनी कृपा करना चाहता है उस पर करता है। हम भी प्रभु से प्रार्थना करें कि वह दयामय प्रभु हम पर भी अपनी कृपा की वर्षा करें, आमीन। एक भाई ने, जो कि दार्शनिक दृष्टि से अपने को नास्तिक मानते हैं, विनोबा जी से प्रश्न पूछा, आप आजकल अध्यात्म का विशेष रूप से उल्लेख किया करते हैं, इस अध्यात्म से आपका क्या मतलब है? विनोबा जी ने जो जवाब दिया उसका आशय है कि 1, सर्वोच्च नैतिक मूल्यों में तथा नैतिक जीवन में श्रद्धा, 2, जीव मात्र एक हैं इस ज्ञान में एवं भान में श्रद्धा, और 3, मृत्यु उपरांत जीवन के सातत्य में श्रद्धा। उस भाई ने फिर पूछा, क्या विश्व के सभी धर्म इन बातों को मानते हैं? विनोबा जी ने स्पष्ट उत्तर दिया, जी हाँ। विनोबा जी ने जिन धार्मिक ग्रंथों का चयन और संपादन किया है उनमें इस दृष्टि के कारण अध्यात्म अर्थात दर्शन, भक्ति, नीति और भक्तों के भगवान का सद्गुण संकीर्तन होता है। भक्तों के विशेष अनुभवों का दिग्दर्शन भी उनमें होता है। कुरान सार भी इन्हीं विषयों का संपुट है, यह स्पष्ट है। कुरान के अध्ययन के समय विनोबा जी ने जिन ग्रंथों का अध्ययन किया उनकी जानकारी मिलना तो कठिन है, क्योंकि विनोबा जी स्वयं उस विषय में कुछ कहेंगे यह आशा हम रख नहीं सकते। उनके आश्रम के ग्रंथालयों में ही जो ग्रंथ इस विषय पर होंगे वे सब उन्होंने देखे हैं, यह स्पष्ट है। जो ग्रंथ पढ़कर उन्होंने ग्रंथ स्वामियों को लौटा दिए होंगे उन्हें हम कैसे जाने, इस विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते। पर कुरान सार का संकलन

0: करते समय भूदान पदयात्रा में जिन ग्रंथों का उपयोग विनोबा जी ने किया उनकी सूची निम्नानुसार हम आपको बताते हैं। विनोबा जी के मन में शब्दों का जो अर्थ है उस अर्थ के अनुकूल अर्थ है या नहीं यह देखने के लिए जिन जिन ग्रंथों का उपयोग हुआ वे ग्रंथ हैं कुरान शरीफ के अंग्रेजी अनुवाद और भाष्य नंबर 1 एम पिक्थाल का अनुवाद, नंबर 2 पामर का अनुवाद, नंबर 3 यूसुफ अली का अनुवाद और नंबर 4 मौलवी शेर अली का अनुवाद। उर्दू अनुवाद और भाष्यों में है नंबर 1 कुरानुल मजीद हज़रत शेखुल हिंद मौलाना मोहम्मद हसन और हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी देवबंदी, नंबर 2 कुरानुल हकीम शाह रफ़ीउद्दीन साहब दहलवी और मौलाना अशरफ अली साहब थानवी, नंबर 3 तफसीर सगीर हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन अहमद साहब इमाम जमात अहमदिया, नंबर 4 हमाय शरीफ शम्सुल उलमा जनाब मौलवी हाफिज़ नज़ीर अहमद ख़ान साहब। अंग्रेज़ी संदर्भ ग्रंथों में हैं कनकॉर्डेंस ऑफ ग्लॉसरी ऑफ कुरान बनारस के क्रिश्चियन मिशन द्वारा प्रकाशित। उर्दू संदर्भ ग्रंथ है लुगातुल कुरान, इसकी 6 जिल्दें, इसके प्रकाशक हैं नदवतुल मुसन्निफीन जामा मस्जिद दिल्ली।
1: आचार्य विनोबा भावे की जीवनी पर आधारित प्रेमपंत अहिंसा का इस रेडियो धारावाहिक में आज हमने जाना विनोबा जी द्वारा लिखित कुरान सार।
2: यह कार्यक्रम रेडियो एमगिरी 90.4 FM द्वारा प्रस्तुत किया गया।